मीना कुमारी और राजकुमार के साथ मुमताज, संगीतकार रवि और गीतकार शाहिर लुधियानवी, आवाज फरिश्ता मोहम्मद रफी।

माँ के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। राजकुमार प्लीडिंग विद मुमताज ऑन द स्क्रीन, फिल्म का नाम काजल, साल 1965, संगीत का रवि, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसको लिखा था साहिर लुधियानवी ने। यह है यादों का सफर, और अब चलो ले चलते हैं 1959, इंसान जाग उठा। आपको याद होगा फिल्म इंसान जाग उठा, मधुबाला और सुनील दत्त, नासिर हुसैन और मुमताज, संगीतकार एस डी बर्मन और गीतकार लव बॉय शैलेंद्र, आशा के साथ मोहम्मद रफी।

0: 1963 की फिल्म आज और कल, सुनील दत्त के साथ नंदा, रवि संगीतकार और आवाज मोहम्मद रफी।
1: दिलों को झंकृत करें,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
0: ये है संगीत की झंकार और मैं हूँ आपके साथी फिरोज खान और आप सुन रहे हैं
3: यादें
0: यादें। हर रविवार की सुबह 10 बजे से 79 ब्रिजमन पर संगीत की झंकार के अंतर्गत।

एक बार फिर फिल्म आजो कल, 1963 की फिल्म आजो कल, पर्दे पर सुनील दत्त के साथ नंदा, संगीतकार रवि और आवाज मोहम्मद रफी। ये है संगीत की जानकार, बातों की जानकार नहीं। मोर म्यूजिक लेस टॉक, डेफिनेटली नो भाषण, हर रविवार को 10 से। इफ यू लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल हियर दिस यादों का सफर। जॉइन मी Every Sunday mornings from 10 o'clock. Make it a date. You will not regret. ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, ये हमारा स्पेशल प्लेलिस्ट। इट्स स्पेशल ओनली बिकॉज इट्स नॉट व्हाट आई सेलेक्ट बट व्हाट आई रिजेक्ट। और यादों के सफर में इस बार साल 1959, फिल्म का नाम बरखा, पर्दे पर जगदीप। डू यू रिमेम्बर हिज हेयर कट? Yes, Jagdeep with his unique haircut. Saal 1959, Saath mein Nanda. Sangeetkar Chitra Gupta. Saath mein Rafi aur Lata Mangeshkar.

0: 1959 की फिल्म बरखा, पर्दे पर जगदीप और नंदा, चित्रगुप्त, संगीतकार लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी। अब हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, 2 मिनट की ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक लेंगे। उसके बाद जब वापस आएंगे आपके लिए हम जारी रखेंगे यादों का सफर, जिसके अंतर्गत आप सुन सकेंगे 1962 के फिल्म मैं चुप रहूंगी, 1963 के फिल्म नर्तकी और 1965 के फिल्म जानवर। यह है संगीत की झनकार, आप इंतजार कीजिए। टेक योर कॉफी ब्रेक एंड जॉइन मी अगेन इन 2 मिनट्स।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की।
2: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनका।
0: दिलों को झंकृत करें,
4: हवाओं में, फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
0: रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर यह है संगीत की झनकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आकर आप सबका स्वागत करते हैं संगीत की झनकार में। और संगीत की झनकार आपको याद रहे, हर रविवार की सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे स्टेशन पर हम पेश करते हैं 71 ब्रिस्बेन पर। मैं हूं आपका साथी फिरोज खान और आपको याद रहे मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को सुबह 6 बजे से 6 से 7 बजे तक आपके लिए गीत की झनकार में। और संगीत की झनकार आपको याद रहे हर रविवार की सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे स्टेशन पर हम पेश करते हैं 71 ब्रिस्बेन पर। मैं हूं आपका साथी फिरोज खान और आपको याद रहे मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को सुबह 6 बजे से 6 से 7 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं डिवोशनल संगीत।

Those early risers, why don't you start your Sunday with me with devotional Sangeet? And of course, you can join after that Islamic program, Sawal aur Jawab, Hazrat Maulana Fazil Dad ke saath. Aur phir Islamic program ke baad, aap sun sakenge Vedvani. Ji haan, what a way to start your Sunday morning with devotional Sangeet, Islamic program, and Vedvani. And then, of course, from 9 to 10, समी निन्वान के मालिक जतीश पुरन आपके साथ दे देते हैं 9 से लेकर 10 बजे तक. उनका टेलीफोन नंबर नोट कीजिए 327-9701. इफ यू वांट टू कंप्लेन, क्रिटिसाइज और कॉम्प्लीमेंट, व्हाट डिड यू गिव हिम अ कॉल, बिकॉज ही लिसन टू यू, बिकॉज यू लिसन टू हिम. सो 1701 ब्रिस्बेन पर यह है संगीत की झनकार, हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक. और संगीत की जानकार का शुरुआत करते हैं हम चुने हुए लोकप्रिय संगीत 50s, 60s, 70s से निकाली हुई. अभी थोड़ी देर में उसको जारी रखेंगे और आपके लिए हम पेश करेंगे फिल्म मैं चुप रहूंगी, नर्तकी और उस्तादों का उस्ताद वगैरह. बट बिफोर आई स्टार्ट द जर्नी, यादों का सफर, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक विद अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंटल मेलोडी. पंछी बनो उड़ के फिर

तो चलो एक बार फिर शुरू करते हैं अपने सफर को, यादों का सफर डाउन मेमोरी लेन। चलो साथ देते हैं और आपको ले चलते हैं साल 1962, जब इस गीत को सुने, जस्ट थिंक वो यू व्हेन यू फर्स्ट हर्ड दिस सॉन्ग। साल 1962, फिल्म का नाम मैं चुप रहूंगी। पर्दे पर सुनील दत्त के साथ मीना कुमारी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, चित्रगुप्ता संगीतकार। यह है यादों का सफर।

साल 1962, फिल्म का नाम मैं चुप रहूंगी। सुनील दत्त के साथ मीना कुमारी, संगीतकार चित्र गुप्ता। ये है यादों का सफर। मैं जानता हूं लंबा है सफर, इसमें कहीं रात तो होगी।

0: एक बार फिर पर्दे पर द डायनेमिक ड्यू ऑफ दोज डेज नंदा एंड सुनील दत्त 1963 की फिल्म नर्तकी रवि संगीतकार और गीतकार शाकिल वादयोनी और आवाज वही फरिश्ता मोहम्मद रफी
1: याद गहरी हो तो रुक रुक के कसक होती है याद गहरी हो तो रुक रुक के कसक होती है दर्द मीठा हो तो थम थम के करार आता है।

Oh, that blue-eyed hero of 60s, Shammi Kapoor, saath mein Rajshri. What a movie. Saal 1965. Yaad hai? Agar hum nahi jante hain, to main bata deta hoon. Janwar. Shammi Kapoor, saath mein Rajshri, 1965. अगर आपको मेमोरी नहीं जोल्ट किया कि मूवी जानवर ही है तो मैं जानता हूं आप उन दिनों बहुत कम फिल्म देखते थे। फिलहाल शंकर जयकिशन संगीतकार और गीतकार हजरत जयपुरी। और फिर इस बार कश्मीर की कली 1964 में आया था और उसमें शमी कपूर ने शर्मिला टैगोर के साथ व्हाट अ पार्टनरशिप अगेन अनदर यंग एक्ट्रेस विद शमी कपूर। ओपिनियर संगीतकार इस बार मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले। यह है संगीत की जानकार और यह है यादों का सफर। मैं हूं आपके साथ फिरोज खान। हर रविवार को 10 बजे से 7

0: साल 1964 कश्मीर के कली ओपिनियर संगीतकार और आवाज मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले, पर्दे पर शमी कपूर के साथ शर्मिला
1: के बाद एक बार फिर वापस आकर आप सबका स्वागत करते हैं संगीत की जानकार पर। संगीत की जानकार स्टेशन पर हर रविवार की सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक हम अपने कार्यक्रम प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं यादों के सफर के साथ, चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई, और उसके बाद हम आपके लिए पेश करते हैं द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड हिट्स ऑफ 90s। फिलहाल यादों का सफर को शुरुआत करने से पहले, यादों के सफर को जारी रखने से पहले, हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं शशि जोखन को, ऑल द वे फ्रॉम वेलिंगटन। जी हाँ, शशि जोखन आपके लिए 5 से लेकर 7 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर एक खास प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं, मिले जुले प्रोग्राम्स। शशि, वेलकम एंड नमस्ते।
2: नमस्कार फिरोज जी, खास तौर से संगीत की जानकार की जितने भी लिसनर्स है सभी को मेरी ओर से प्यार भरे नमस्कार। हाँ जी, पहले पहल तो मैं ये आपको बता दूं कि हाँ जी, 5 से 7 बजे हर रविवार को मैं लेकर आती हूँ रेडियो ब्रिजवानी पर एक रंगीन शाम आपके नाम और आप जैसे अनाउंसर्स के साथ जुड़ जाती हूँ रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से। सो थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किए हैं चंद मिनटों के लिए। और चलते हैं आपके जो पहला सवाल है अबाउट वर्ल्ड शो का जो टूर्नामेंट होने जा रही है वर्ल्ड कप। तो अगर ब्रिस्बेन में ये इतने सुबह सुबह आप लोग उठ जाते हो अभी देखने के लिए, अभी तो शुरू ही नहीं हुई है ना, मेरे ख्याल से ये 12 जून से लेकर 20 जुलाई तक होने को है।
1: जी हाँ, मगर देखिए इसमें क्या है, अभी फेस्ट अभी लास्ट 4-5 डेज से टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब टीम दे प्लेइंग विद अदर टीम एक्चुअल गेम्स जस्ट टू गेट द फाइनल ट्यूनिंग डन फॉर देयर टीम। तो आज सुबह जैसे हाँ, जैसे न्यूजीलैंड डिड अ ट्रायल रन लास्ट यस्टरडे, और आज सुबह 5 बजे ऑस्ट्रेलिया प्लेड स्विट्जरलैंड। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द एक्चुअल टीम बिफोर दे एक्चुअली गो इनटू द टूर्नामेंट व्हिच स्टार्ट फ्रॉम जून 11th। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट योर रेडियो प्रोग्राम। शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक बहुत से लोग आपके प्रोग्राम को इंतजार करते हैं, और आप बताएं फिर उसके हाइलाइट्स। मैं जानता हूँ आपका प्रोग्राम मिले जुले प्रोग्राम आप पेश करते हैं, तो टेल मी फ्यू ऑफ द हाइलाइट्स व्हिच विल बी देयर दिस इवनिंग फ्रॉम 5 to 7।
2: हाँ जी, मैं मिली जुली कार्यक्रम लेकर आती हूँ ताकि मैं सभी को इसमें शामिल कर सकूँ, सभी उम्र के लोगों को। तो नए और पुराने गीतों का संगम तो ऑब्वियसली है ही। कौन से गीत मैं बजाऊंगी आज, खास सॉन्ग क्या है, पर ये तो मैं सरप्राइज ही रखूंगी, ठीक है। और पारिवारिक विषय जो मेरा एक मुख्य है, जो माय फेवरेट इज पारिवारिक विषय, तो इसमें आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ, वैसे तो आज के समय में फिरोज जी अगर किसी ऐसी समस्या की बात की जाए जिसे ज्यादातर लोग झेल रहे हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं उनकी सुंदरता पर भी पड़ता है, तो वो है बालों का झड़ना, पतला होना, कमजोर होना और कम होना। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी पर कुछ झलक डालेंगे। और कैसे एक महिला है जिनकी 5 फुट की बाल, इतनी लंबी बाल वो कैसे मैनेज करती है, थोड़ी थोड़ी बातें इस पर करेंगे। और इसके साथ साथ अनदर अच्छी टॉपिक जो मुझे बहुत पसंद है वो है छोटी छोटी बातें अपनों की। तो इसमें कई ऐसे बातें होती हैं जो हम जीवन की अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज है कि जीवन के कीमती वक्त हम कैसे गवा रहे हैं, कैसे गवा देते हैं, और तो करे तो क्या करे, तो इस पर छोटी सी किसी और की जुबान से हम सुनेंगे।
1: okay, जी, इसके मतलब आपका प्रोग्राम इट समराइजेस मनोरंजन, संस्कृति और समाचार है।
2: हाँ जी, हमें जीवन में अपने जीवन में हर बार कुछ ना कुछ सुधार लानी चाहिए। हाँ। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मगर फिर भी इट्स इम्पोर्टेंट कुछ ना कुछ बदलाव, हम अपने हैबिट्स से इतना ज्यादा उसमें घुल जाते हैं कि हम अपने हैबिट्स को चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। तो अच्छा अच्छे अच्छे के लिए हमें कुछ ना कुछ कुछ सुधार अपने जीवन में लानी चाहिए, एंड एज पेरेंट्स एज वेल, जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे देखेंगे सुनेंगे और वही बनेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने में बदलाव लाएं ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें भी बदलाव देखने को मिले।
1: चलो,
2: तो यही है मेरी इंटेंशन।
1: लेट मी हैसन टू ऐड Sashi, that is not only Talk Fest, you have good selection of song, yaadon ka safar, purane sangeet se nikale hue chune hue sangeet aur aadhunik sangeet bhi, to shrotaon ko bataye kaun sa roughly any idea un logon ko kya milega sunne ko?
2: ये तो मैं सरप्राइज ही रखूंगी। अभी तो वो सुन रहे हैं यादों का सफर, यानी सुनेंगे तो वो उनका उनको उसी में लुफ्त होनी है, यानी कि उन्हीं में मजा लेनी है। और हमारी जो एक रंगीन शाम आपके नाम है वो शाम को आने को है, तो वो रहने दो। अभी आप अपने कार्यक्रम में जो बजाएंगे वही हम सुनेंगे और लिसनर्स को वही सुनने को दीजिए आप।
1: अच्छा,
2: ठीक है,
1: ओके, राइट। बिफोर आई लेट
2: यू, यादव यादों के सफर में आप बहुत अच्छे अच्छे
1: नहीं, मैं उसके नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके सिलेक्शन दो है। कभी कभी आप शुरुआत करते हैं प्रोग्राम में, quite a number of songs I haven't heard for a very long time, or very new songs, you know, you have some new selections there too, yeah.
2: हाँ जी, आज हम शुरुआत करेंगे, आप कहते हो तो मैं बता देती हूँ, सुखविंदर सिंह जी की आवाज में एक गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, एंड बस ऐसे ऐसे बस होले होले हम पूरे 7 बजे तक हमारे लिसनर्स की जो जी को बहलाते रहेंगे।
1: अच्छा, बिफोर यू गो संगीत की जानकार को आगे बढ़ाते हुए, मैं आई जस्ट वांट टू आस्क यू, लास्ट वीक आपने स्टॉकिंग के विषय में बात किया था ना?
2: हाँ जी, बिल्कुल
1: बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताएं, सिर्फ स्टॉकिंग फीमेल्स के साथ होती है?
2: बिल्कुल नहीं।
1: बट आपको
2: I'm not a feminist, I'm telling you, but मैं बहुत न्यूट्रल रहने की कोशिश करती हूँ कि यूथ्स के साथ भी, यानी कि मर्दों के साथ भी स्टॉकिंग होती है। सो ऐसे कोई बात नहीं कि महिलाएं बहुत अलग
1: है।
2: अगर कोई भी महिला अगर किसी मर्द को स्टॉक करते हैं तो प्लीज उससे हट जाइए आप, क्योंकि ये सही काम नहीं है, ऐसे करनी ही नहीं चाहिए।
1: अच्छा,
2: वरना फिर पुलिस से निपटाना पड़ेगा आपको।
1: चलो, लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू यू फ्रॉम 5 to 7। ये थी हमारी मेहमान शशि जोखन, ऑल द वे फ्रॉम वेलिंगटन। फिलहाल ये है संगीत के जानकारों, मैं हूँ आपका साथी फिरोज खान।
3: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनकार।

1963 के फिल्म उस्तादों का उस्ताद, पर्दे पर शकीला के साथ प्रदीप। प्रदीप डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही वाज अनदर वेरी रोमांटिक एक्टर ऑफ 1960s। रवि संगीतकार और गीतकार आसद भोपाली, आवाज मोहम्मद रफी। और अब चलो साल 1963, ऐसे गीत जिसको हम अपने प्रोग्राम में यादों के सफर में बार बार शामिल करते हैं। फिल्म का नाम ए रास्ते हैं प्यार के। और क्यों इसको हम शामिल करते हैं, क्योंकि पर्दे पर आप देखेंगे लीला रानी को। जितने ही गीत संगीत हम अपने यादों के सफर में सिलेक्ट करते हैं, हम उसको देखते हैं जब हम उसको ट्रेस पे करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। इसलिए बार बार मैं इसको इंक्लूड करता हूं अपने प्रोग्राम में, क्योंकि इस क्लिप में लीला नायडू है। शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट इन दोज डेज 1960s। शी वॉज पार्ट फ्रेंच पार्ट इंडियन। शी स्पोक फ्रेंच बेटर देन हिंदी। बट इस बार पर्दे पर अशोक कुमार के साथ शशिकला भी, लेकिन सुनील दत्त एंड लीला नायडू मेड अ परफेक्ट डायनेमिक ड्यूओ ऑफ 60s। ये रास्ते हैं प्यार के संगीतकार रवि, आवाज आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी। सुनिए, मौका रहे तो क्लिप भी देखें।

0: Yadu Kesafarme, one of those favorite clips of Leela Naidu. Yade, yade.
1: याद गहरी हो तो रुक रुक के कसक होती है, याद गहरी हो तो रुक रुक के कसक होती है, दर्द मीठा हो तो थम थम के करार आता है।
0: जी हाँ, यादों का सफर, संगीत की झनकार, हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक। अगर आप 50s, 60s और 70s में दिलचस्पी रखते हैं, द गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड में, तो मेक इट अ डेट एवरी संडे फ्रॉम 10 o'clock, आपके साथ फिरोज खान। और इस बार 1965 के फिल्म पूर्णिमा याद है ना, धर्मेंद्र और मीना कुमारी, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार। और चलो थोड़ा ट्रेन ब्रेक करते हैं, शामिल करते हैं मुकेश को, मुकेश लता मंगेशकर के साथ 1965 की फिल्म

जी हाँ, प्रोग्राम में आवाज मुकेश। कोशिश करेंगे आने वाली सप्ताह, आने वाली यादों के सफर के अंतर्गत हम आपके लिए खास तौर पर पेश करेंगे मुकेश से गाए हुए संगीत, स्पेशली ड्यूट संग्रह। कल्याण जी, आनंद जी के संगीत पर आपको याद होगा साल 1965 फिल्म पूर्णिमा, धर्मेंद्र और मीना कुमारी पर्दे पर।

0: खुशी, ना मिलने के गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। जी हाँ, ख्याल कैफी आजमीन और संगीतकार खयाम लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी 1961 जोल्ट योर मेमोरी, फिल्म शोला और शबनम, पर्दे पर धर्मेंद्र। और अब चलो शामिल करते हैं साल 1961। आई गिव यू हिंट, पर्दे पर रजिंद्र कुमार, राजकुमार, आशा पारक और मुमताज। इसमें संगीत दिया था रवि और इस फिल्म में बहुत बहुत से गीत मोहम्मद रफी ने गाए थे। साल 1961, यस द फिल्म का नाम, बहुत ही लोकप्रिय फिल्म, उन दिनों का फिल्म घराना। साल 1961, यादों का सफर में अ डेफिनेट ओल्ड क्लासिक हिट्स। और साथ ही साथ बार बार कहता हूं, प्रोग्राम को लुत्फ उफकाएंगे अगर आप सोचेंगे वर वर यू व्हेन यू फर्स्ट हर्ड दिस सॉन्ग।
1: हुस्न वाले

1961 की फिल्म घराना, पर्दे पर राजेंद्र कुमार के साथ राजकुमार और आशा पारे के साथ मुमताज, डायनेमिक ड्यूज ऑफ 60s, 1961 की फिल्म, संगीतकार रवि और आवाज मोहम्मद रफी। यह है यादों का सफर, यह है संगीत की जानकार, बातों की जानकार नहीं। मोर म्यूजिक लेस टॉक, डेफिनेटली नो भाषण। आपको याद होगा मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार की सुबह 6 बजे से 6 से 7 बजे तक। आपके लिए हम पेश करते हैं डिवोशनल संगीत। इफ यू आर वन ऑफ दोज अर्ली राइजर्स, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर संडे विद मी विद डिवोशनल संगीत। हमारे व्यक्तिगत पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई डिवोशनल संगीत, और उसके बाद हम आपके लिए पेश करते हैं इस्लामिक प्रोग्राम हजरत मौलाना फजल दाद के साथ, और फिर वेदवाणी। What a way to start your Sunday mornings. And then, Jack Puran aapke saath dete hain 9 se lekar 10 baje tak. If you want to complain or compliment, unko phone kar sakte hain 9 o'clock to 10 o'clock every Sunday morning. Aur phir main aapke saath phir jud jata hoon 10 baje se. 10 se saare 12 baje tak aapke liye khas taur par hum aapko le chalte hain yaadon ke safar mein. Aise geet jo hit parade mein apni chhaap chhod chuke hain. Aise geet aur कॉम्प्लीमेंट, उनको फोन कर सकते हैं 9 o'clock टू 10 o'clock एवरी संडे मॉर्निंग। और फिर मैं आपके साथ फिर जुट जाता हूं 10 बजे से, 10 से 12:30 बजे तक आपके लिए खास तौर पर हम आपको ले चलते हैं यादों के सफर में। ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर

कुमारी पर्दे पर, रवि संगीतकार और प्रेम भवन गीतकार मोहम्मद रफी के साथ इस बार आशा भोसले। ये है संगीत की जनकार, आपके साथ फिरोज खान।

0: प्यार का सागर रजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर्दे पर, रवि संगीतकार और गीतकार प्रेम धवन, आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी। अब चलो थोड़ी सी 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे आपके साथ संगीत की जानकार को आगे बढ़ाते हुए। रेडियो ब्रिजवाणी 1701।
1: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं।

0: और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। यह है संगीत के जानकार 79 ब्रिस्बेन पर। संगीत के जानकार का शुरुआत करते हैं यादों के सफर के साथ, चुने हुए लोकप्रिय संगीत, गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड, हिट्स ऑफ 40s, 50s एंड 60s। डोंट फॉरगेट द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड, हिट्स ऑफ 90s, जिसको हम पेश करते हैं यादों के सफर के साथ। तो साथ दीजिए अभी से लेकर 12:30 बजे तक हिट्स ऑफ 90s।
3: आप सब सुनने वाले को फिरोज खान का नमस्ते, अदाब और सासिकार। आज वीकेंड है ना, हमको तो गोल्ड कोस्ट होना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों यहाँ हूँ।

हमारा साथ देते तो आपका स्वागत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से, हिट्स ऑफ 90s और रीसेंट पास्ट हिट्स। शुरुआत किया शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और करीना कपूर के फिल्म दिल तो पागल है। उत्तम सिंह संगीतकार, गीतकार आनंद बख्शी, लता मंगेशकर और उदित नारायण, और अब संजय दत्त की फिल्म भागी से निकाली हुई, संगीतकार साजिद वाजिद, गीतकार फयाज अनवर और साथ

Yes, the typical beat and the typical sound for Govinda. Film Beti number one. Sangeetkar Biju Shah और गीतकार माया गोविंद. उदित नारायण के साथ भूपेंद्र मिंटू. ये भूपेंद्र मिंटू है ना, सिडनी के कलाकार है. उन दिनों 90s में जितनी शो ब्रिस्बेन में मैं किया करता था म्यूजिकल शो, ये मिंटू बहुत ही पॉपुलर था. इसने जाकर इंडिया में उदित नारायण के साथ इस फिल्म के लिए गीत गाया. ये है संगीत की झंकार, आपका साथ फिरोज खान.

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे,
2: और ये है संगीत की जानकार रेडियो 701 ब्रिजबेन, और आपके साथ फिरोज खान।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: Earn money from your empty drink containers.
2: यह रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।

Good afternoon and welcome back to Radio Rizwani. अरे बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो रिजवानी पर। मैं हूं रोहित सिंह, ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका और हमारा साथ है शाम का सफर में। नमस्कार, केमचो, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम और बोला कहते हैं। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो रिजवानी पर। मैं हूं रोहित सिंह, ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा रेडियो रिजवानी पर। आपने अपना रेडियो अभी खोला है, सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर हम रेडियो ब्रिजवानी पर करना चाहेंगे। देश विदेश में आप हैं, इंटरस्टेट में आप हैं और अगर आप ब्रिजबन में कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है शाम के सफर में। ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आप सुन सकेंगे शाम का सफर। दो घंटे का रंगीला कार्यक्रम में रोहित सिंह का साथ दीजिएगा ढाई बजे तक शाम के सफर में। और अगर आपने अपना रेडियो अभी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर।

हम अच्छे की तरफ फोन नंबर 3279-1701 शाम का सफर नवा कार्यक्रम सभी हमारे साथ जुड़कर सुनेंगे दो घंटे के लिए। याद कीजिएगा आपके हम सफर आपके मेजबान आपके दोस्त रोहित के साथ, ठीक है, दो घंटे के लिए खूबसूरत सा कार्यक्रम हम अपने स्टूडियोज में लाइव आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। साथ दीजिएगा अभी से लेकर ढाई बजे तक शाम के सफर में खूबसूरत सा गीत खूबसूरत सा कार्यक्रम आप हमारे साथ थोड़ी देर में सुन सकेंगे।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: के साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ है और दूसरे साथियों चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए पेश करते हैं आज के स्थानीय कलाकार और स्थानीय कलाकार में हम आपके लिए पेश करते हैं स्वर्गीय दयानंद को

और याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ ये कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुने। दोस्त साथी चलते हैं एक बार फिर देहरादून की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत शाम का सफर में, याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ है ठीक है अभी से लेकर 2:30 बजे तक। साथ जरूर दीजिएगा रेडियो ब्रिजवानी पर।

0: डैनल की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत रेडियो ब्रिजवानी पर रोहित सिंह के साथ आप सभी सुन रहे हैं।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

अंकुश साथी आज की जगह के साथ कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिज वाणी पर सुन रहे हैं। ठीक है, इसे लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है। जरूर से साथ दीजिएगा 2 घंटे के लिए। चुड़ी के घड़ी के अनुसार ठीक 10 मिनट रह गया है 1 बजने में। शाम का सफर में आपका हमारा साथ है। चलते सबसे खूबसूरत गीत एक अलका याग्निक की आवाज में हम पेश करने जा रहे हैं। खूबसूरत गीत है आप सभी के लिए हमारी ओर से वही भिजवाने पर।

खूबसूरत खूबसूरत शाम रोशनी के साथ रेडियो ब्रिस्बानी पर फरमाइश करने वाले श्रीमान श्रीमती रवि प्रताप, आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत संगीत।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के दर जा रही हो।
3: Get ready Brisbane! आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स। तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
2: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
4: ओए राहुल, वीरे तेरे केस का की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
7: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
6: अरे वाह, इनका पता बताना।
7: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
8: रोशि के साथ कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिस्बेन पर सुन रहे। शाम का सफर ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक। जरूर से हमें मोबाइल पर फोन कीजिए, और अगर आप हमें लैंडलाइन पर फोन करना चाहते हैं 3279-1701 डायरेक्ट लीडर लाइन। रेडियो ब्रिस्बेन आपकी पहचान। बॉपी लैरी, कविता कृष्णमूर्ति और कॉरस की आवाज में।

इसके तुरंत याद करना चाहते हैं शिवन श्रीमती धर्मेश और रोमन नारायण को। आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत हमारी ओर से रेडियो प्रिजवानी पर याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ हैं। साथ दीजिएगा ठीक है अभी से लेकर 2:30 बजे तक शाम का सफर में।

और चलते इस गीत में हम याद करते हैं शिमा श्रीमती अनिल चंद को। आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में।

और दोस्त याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ सुन रहे हैं शाम का सफर। 2:15 रह गया है और ये कार्यक्रम 2:30 समाप्त हो जाएगा। साथ दीजिएगा ठीक है अभी से लेकर 2:30 तक।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

बबलरिया और अलीशा शिरा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत संगीत आप सभी के लिए रेडियो बिजवानी पर। ठीक ढाई बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, साथ जरूर दीजिएगा। आपका हमारा साथ है, रोहित सिंह के साथ है रेडियो बिजवानी पर।

nice.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: कार्यक्रम में सबसे आखिरी गीत आप सभी के लिए है।

खुशी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगले रविवार की शाम ठीक 12:30 बजे से होगा। रेडियो बंद मत कीजिएगा, थोड़ी देर में आप सभी के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्षत हम आई हैव अ ब्यूटिफुल रेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, शब खैर और दिन आका।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंट

0415438 या मोबाइल 0415952660 0415952660। यह रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

एंड वेलकम बैक अगेन. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701. आपके साथ हरोई सिंह ने चलते हैं अगली सफर पर आपके साथ. सो जो लोग आज पहली बार हमें सुन रहे हैं, स्वागत है आप सभी का रेडियो विस्वानी AM पर, जिसे आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियोज 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से. आज आपके साथ सो

से लेकर ठीक 5 बजे तक साथ है हमारा आपका, आपके मनोरंजन के लिए एक बार फिर आज हम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और हिट्स, न्यू हिट्स, रिमिक्स सभी कुछ लेकर आपके एंटरटेनमेंट करने वाले हैं ठीक 5 बजे तक। अगर आपकी कोई अपनी फरमाइश है, आज आपकी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 3279-1701 पर, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS कर सकते हैं। इसी के साथ हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, तारे भी दिन में आसमान में होते हैं लेकिन दिखाई देते हैं सिर्फ रात को, इसी तरह इंसान अपनी काबिलियत में हमेशा अपने अंदर मौजूद रखती है, बस सही समय पर आने पर दुनिया उसे पहचान पाती है। इसीलिए दोस्तों खुद पर विश्वास रखिए, आपकी चमक भी एक दिन जरूर दिखाई देगी। हैप्पी वीकेंड।

पहला गीत आप सभी के नाम जा रही है, राज कपूर की फिल्म मुकेश की आवाज का गीत आप सभी के लिए जो आज रेडियो बिस्वानी सुन रहे हैं।

पर्दे पर देवानंद के लिए हेमंत कुमार की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने सुना। फिल्म का नाम था सोलवा साल। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी 1701। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से। इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 3:15 बज चुके हैं दोस्तों। बहुत से लोग अपना गीत सुनने के लिए इंतजार में आ गए हैं, लेकिन उससे पहले एक हमारी रिक्वेस्ट यानी कि हमारी फरमाइश आप सुनते हैं।

0: प्रभात तेरसा गीत राधा रानी का भजन आपने सुना। रेडियो विजवानी आप सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत से प्यारे प्यारे राधा कृष्ण के भजन हैं। जैसे आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो बिल्कुल ही लेटेस्ट हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बारी बारी से, लेकिन आज ही नहीं सब, क्योंकि सरप्राइजेस विल बी गॉन। आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी। चलते हैं, हमारे कुछ स्पॉन्सर्स के खबर सुनते हैं, उसके बाद हम लेकर आने वाले हैं आज के सभी की फरमाइश।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों बहुत समय नहीं लेते हुए आज की फरमाइशी प्रोग्राम, और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चलते हैं सबसे पहले लेस वेगस की ओर, जहां पर दिनेश सोलंकी, दक्षा सोलंकी और ग्रैंड चिल्ड्रन उनके साथ जुड़े हैं। आज हमारा प्रोग्राम सुन रहे लेस वेगस में। आरव, जैडन और अनाया, आप फैमिली गीत सुनना चाहते हैं, तो सुनते हैं आपके लिए बहुत प्यारा सा एक फैमिली गीत।

ब्यूटीफुल फैमिली सॉन्ग दोस्तों, इसकी फरमाइश आई थी हमारे पास लास वेगास से, जहां में सुन रहे हैं दक्षा सोलंकी, दिनेश सोलंकी और ग्रैंड चिल्ड्रन है साथ में, अर्नव, जैडन और अनाया। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। हम चलते हैं सेक्रामेंटो यूएसए, और जहां से हमारे पास अगली रिक्वेस्ट आई है कामनी नारायण की ओर से। कामनी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक ऑल द टाइम ऑल द वे फ्रॉम यूएसए से। तो चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं आज का अगला गीत।

0: बहार पर ऐसा गजल सॉन्ग आपने सुना जिसकी फरमाइश आई थी हमारे पास सैक्रामेंटो यूएसए से कामनी नारायण की ओर से।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
5: Hi guys, I'm Madhvit from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: इस वक्त समय हुआ हमारे स्टूडियोज में 2 मिनट हो गए हैं 3:00, यह है शाम का सफर रेडियो ब्रिस्बानी हेरिटेज पार्क से। हमारे साथ जुड़ी है इस वक्त साधना। हाय साधना, और आपके लिए पेश है अगला गीत जिसे मैंने लिया है लेटेस्ट बीट्स पर।

हमारे साथ शामिल हो गई थी साधना जो हमें सुन रही है हेरिटेज पार्क में. थैंक्स साधना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी. हम चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए. ललिता गौतम जहां हमें सुन रही हैं, और चलते हैं सुनते हैं आपकी पसंद पर आज जाने का जिद ना करो. सुनते हैं

0: हबीब वाली मोहम्मद की आवाज में इस गजल को आपने सुना, जिसकी फरमाइश करने वाली थी ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज के घड़ी में ब्रिस्बेन टाइम 3:15 बज चुके हैं। चलते जो अगला गीत है, इसके लिए हमारे पास दो रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट है हमारे पास वहाँ न्यूजीलैंड से प्रवीणा की ओर से, और ताज महल का गीत है, और साथ साथ में इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है फॉरेस्ट लेक से मिस्टर एंड मिसिस सेतराम की ओर से। तो प्रवीणा फ्रॉम न्यूजीलैंड और मिस्टर एंड मिसिस सेतराम फ्रॉम फॉरेस्ट लेक, सुनते हैं आप सभी की रिक्वेस्ट पर अगला गीत।

ब्यूटीफुल सॉन्ग फिल्म ताजमहल से लिया गीत रफी साहब और लता जी की आवाज में आपने सुना। फरमाइश आई थी हमारे पास न्यूजीलैंड से प्रवीणा की ओर से, और साथ साथ में इस गीत की फरमाइश थी हमारे पास फॉरेस्ट लेक से मिस एंड मिसेस अशेत राम की ओर से। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। घड़ी भले ही पुरानी हो जाए लेकिन उसकी अहमियत कम नहीं होती। इसी तरह बुजुर्गों लोग जो होते हैं दोस्तों, अनुभव का खजाना होते हैं। उनकी बातें और सीख जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है। चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, बढ़ते हैं कैलिफोर्निया यूएसए की ओर। मैक्स प्रसाद, आपके लिए अगला गीत सुहानी रात तो हो गई होगी ना वहां पर।

0: कि ना जाने तुम कब आओगे।
1: तो सुहानी रात जरूर ढल चुकी है और लोगों की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, दे लव द सॉन्ग, और उनका यही कहना है कि जरूर सुहानी रात वहां पर हो गई है एंड दे स्टिल हुआ एक लिसनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल द वे फ्रॉम यूएसए, आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस देयर, खास करके हमारा प्रोग्राम वहां पर सुन रहे हैं मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो, तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: 25 मिनट होने वाले हैं हमारे स्टूडियोज में 3:00 और साथ है हमारा आपका ठीक 5 बजे तक आपके साथ रेडियो विजवानी आईएम। आप सुन रहे हैं यह शाम का सफर और इस सफर में हमारे साथ हो लिए हैं वहां मेलबर्न से एल्फ्रेड एंड किरण प्रसाद। हाय दिया, आप दोनों के लिए भी झूठ बोले कौवा काटे लेटेस्ट बीच पर।

तो फरमाइश करने वाले थे एल्फ्रेड एंड किरण प्रसाद जो हमें सुन रहे हैं मेलबर्न में. हम चलते हैं 8 miles प्लेन्स. हमारे पास डेडिकेशन आई है और डेडिकेशन आई है अल्पना की ओर से, डेडिकेटिंग द नेक्स्ट सॉन्ग अपने दोस्त रोहितेश के लिए जो इस वक्त कैलिफोर्निया यूएसए से स्टिल ही हैंगिंग अराउंड इन लोटो काफी जी. क्या बात है. चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत नाजिया हसन.

0: क्या हसन का ब्यूटीफुल सॉन्ग डेडिकेशन आई थी हमारे पास 8 मास प्लेन से अल्पना की ओर से। अल्पना ने इस गीत को डेडिकेट किया था टू अर बेस्ट फ्रेंड रोहितेश को जो कैलिफोर्निया यूएसए से इस वक्त हॉलीडेज पर फिजी में हमें सुन रहे हैं।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: अगला गीत जो है इसे मैंने लिया है फिल्म कश्मीर की कली से, और इस गीत को आप सुनने जा रहे रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में, जिसकी फरमाइश है हमारे पास ग्रीन एकर सिडनी से रजन और मालती प्रसाद की ओर से।

ब्यूटीफुल एंड टचिंग सॉन्ग रफी साहब और आशा जी की आवाज का सॉन्ग आपने सुना फिल्म कश्मीर की कली रजिनो मालती प्रसाद की पसंद पर जो सुन रहे हमें ग्रीनई का सिडनी में। तो चलते हैं दोस्तों केड्रोन पार्क की ओर, फरमाइश है हमारे पास जोनी और सविता की ओर से। तो कहते हैं कि जोनी को बहुत फास्ट सॉन्ग्स अच्छी लगती है, तो सुनते हैं आप दोनों के लिए क्या है।

हम इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे जॉनी और सविता फ्रॉम कैडरन पार्क. और दोस्तों हम चलते हैं मैनली वेस्ट की ओर. मैनली वेस्ट से अगली फरमाइश है हमारे पास लक्ष्मी की ओर से. लक्ष्मी आपके लिए अगला गीत.

गीत को फरमाइश करने वाली थी मेनली वैसे लक्ष्मी। हम चलते हैं दोस्तों, अगला गीत जो है हमारे पास फरमाइश है तीन बहनें की ओर से, और यूएसए कैलिफोर्निया सॉरी सैक्रामेंटो यूएसए से कामिनी नारायण, साथ में उनकी बहन हमारे साथ जुड़ी है आशा फ्रॉम सिडनी, और उनकी बहन प्रवीणा फ्रॉम न्यूजीलैंड। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत, फिल्म का नाम दिल देखे देखो।

समा क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना।

0: फिल्म का नाम था दिल लेके देखो, रफी साहब की आवाज का गीत। और फरमाइश आई थी हमारे पास सैक्रामेंटो यूएसए से कामनी की ओर से, साथ में उनकी बहन हमारा प्रोग्राम सुन रही सिडनी में आशा, और उनकी दूसरी बहन है प्रवीणा फ्रॉम न्यूजीलैंड। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्फारिंग।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
3: 0400-234-235.
4: Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या मेला कार्निवल.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट। आज

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: बैशे हमारे पास अगला गीत के लिए फॉरेस्ट लेक से हफीज अली खान, जविदा खान की ओर से।

फॉरेस्ट लेक से हमारे पास फरमाइश आई थी हफीज अली खान जबीदा खान की ओर से। हम चलते हैं दोस्तों जिल्मिया की ओर। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जिल्मिया में विजय और माला। आप दोनों के लिए लेटेस्ट बीट्स पर सुनते हैं अगला गीत। जब दिल ना लगे दिलदार तो कहाँ आना है, हमारे गली आ जाना।

दिल में से हमारे पास इस गीत की फरमाइश आती है ना कि हमारे साथ शामिल हो गए थे विजय और माला। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी। दोस्तों 4 मिनट हो गए हैं 4 बजकर रेडियो विस्वानी पर, आपके साथ सुबह शाम का सफर और साथ है हमारा आपका ठीक 5 बजे तक। तो चलते हैं अगली गीत की ओर बढ़ते हैं। तो अगली गीत की फरमाइश हमारे पास है फिर से फॉरेस्ट लेक से जावेदा खान की ओर से।

मैडम मस्कलंदर, आपने सुना नुसरत फतेह अली खान की आवाज में ब्यूटीफुल बीच पर हमारे साथ शामिल हो गई थी ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए, और यूएसए का कहना है दे आर लाइवली टुनाइट, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार हमारे पास फरमाइश सैक्रामेंटो से, वहां हमें सुन रहे कामनी, और चलते हैं कामनी की अगली पसंद सुनते हैं।

मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बहुत प्यारा सा गीत है जिसकी फरमाइश किया था कामिनी फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। हम चलते हैं द गैप की ओर दोस्तों। द गैप से अगली फरमाइश हमारे पास है ध्रुव और अरुणा की ओर से। आप दोनों के लिए थोड़ा सा बीच लेकर आ रहे हैं।

तो दोस्तों, इस गीत को मैंने लिया था गुजराती एल्बम से और हमारे साथ शामिल हुए थे जरूर एक गुजराती और जिसका नाम है हमारी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है आशिका फ्रॉम पाकिस्तान। आशिका थैंक यू। हम चलते हैं आपका कपलबा की और कपलबा से फरमाइश है हमारे पास है उमलेश लता, साथ में है कमला और आशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आपकी फरमाइश पर हम एक फूल दो माली से लिवागे।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मन्ना डे की आवाज में आपने सुना फिल्म एक फूल दो माली से लिया गीत। फरमाइश है थी हमारे पास कपल भाषे उमलेश लता की ओर से, साथ में वहां पर हमारे प्रोग्राम सुन रहे आशा एंड कमला।

चलते हैं दोस्तों, अगला गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है। हम चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए, और जहां से हमारे पास फरमाइश है विजयन की ओर से। विजयन, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

0: विजयन बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, क्या बात है। इस गीत को फरमाइश करने वाले थे विजयन, जो हमें सुन रहे हैं सैक्रामेंटो यूएसए में।
1: ਇੰਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਉੱਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਰਚੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूँ?
3: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

दोस्तों, देखिए हमारे साथ कौन शामिल हो गए हैं। जी, हमारे साथ शामिल हो गई है मेरी बहन प्रेमिला कुमार और विनय, जो कल ब्रिस्बेन से USA के लिए वहां पर पहुंच गए अच्छी तरह से, और हमारा प्रोग्राम USA LA में सुन रहे हैं।

और जरूर दोस्तों हमारे साथ इस गीत में शामिल हो गए थे माय सिस्टर प्रमिला और विनय जो ब्रिस्बेन से कल वहाँ लॉस एंजलिस के लिए हॉलीडेज पर 3 मंथ्स के लिए गए हैं और एंजॉय करें अपना हॉलीडेज ऑलरेडी स्टार्टेड एंजॉयिंग. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 5 ही बजने वाले हैं. साथ हमारा आपका आज यही तक था एंड थैंक एवरी वन फॉर योर फीडबैक आउट देयर एंड थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रोग्राम. हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट वीकेंड पर शनिवार को शनिवार मस्ती म्यूजिक पर ठीक 1 बजे से लेकिन 5 o'clock से आपके साथ आज हो जाएगी हमारे बात शशि चौहान साथ उनका जरूर दीजिएगा. अगली सप्ताह के लिए नमस्ते खुदा हाफिज टेक केयर लव यू ऑल गुड बाय.

0: खाली हेडफोन लगा के सुनो, बॉक्स में आवे कि नहीं।
1: अब हेडफोन लगाओ,
2: गाना बजे।
0: हेडफोन लगा उसमें, बॉक्स में, बैरिक्स में।
2: तो मुसाफिर हूँ यार, 12 बजे लगा। एनीवे, होल्ड ऑन।

रविवार की शाम मेरे आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को प्यार भरे नमस्कार। उम्मीद है सब खुशहाल है और आप जुड़ गए हैं मेरे साथ। और कभी कभी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, गड़बड़े हो जाते हैं, मगर कोई बात नहीं, हम तो आगे हैं और आपका साथ देंगे। चलो शुरू करते हैं सुखविंदर सिंह के साथ, उन्हीं की आवाज में, उन्हीं का गाया हुआ ये गीत।

जी मेरे आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं शशि जोखन आपका साथ देने के लिए आ ही गई हूँ एक रंगीन शाम आपके नाम के साथ रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर। तो देखिए, नए और पुराने गीतों का संगम आज तो हर हफ्ते की तरह बस होगा ही होगा, और इसके साथ कई ऐसे बातें करेंगे जो बारी बारी से लेकर आएंगे आपके लिए, सरप्राइज ही होनी चाहिए, ठीक है ना? तो चलो एक और गीत सुनते हैं।

जी, कंगना रेनौत की फिल्म सिमरन का ये गीत आप सुन रहे थे। एंड चलो, मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, ठीक है? उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, ठीक है? और रखते हैं दिल में जो, रखते हैं दिल में जो उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते, ठीक है? तो ऐसे ही आप याद रखिए, कुछ खोना नहीं है हमें जिंदगी में, उम्मीद कायम रखनी चाहिए।

जी, फिल्म प्रेम लीला का ये नगमा आप सुन रहे थे। प्रेम लीला यानी प्रेम रतन धन पायो का ये गीत आप सुन रहे थे। तो इसमें सलमान खान दिखे थे ना, आपको तो पता ही है। तो देखिए, शुक्रवार को काला हिरण का पोस्टर मेकर्स ने रिलीज किया। काला हिरण एक नई फिल्म है जो सलमान खान के एक बर्ड की शिकार उन्होंने किए थे ना, तो इस मामले पर आधारित ये फिल्म बनाई गई है। तो मेकर्स ने पोस्टर के साथ साथ ये घोषणा की थी कि इसका जो टीजर है, ये टीजर भी बहुत ही जल्द रिलीज होगा। हालांकि उससे पहले ही काला हिरण फिल्म विवादों से घिर गया है, क्योंकि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जो लीगल टीम है, उसने इस केस पर फिल्म बनाने वाले मेकर्स को नोटिस भेज दिया है। तो अब देखना है कि होता क्या है, क्योंकि सलमान खान की स्टोरी पर बेस्ड है ये फिल्म। सो इसीलिए उनको तो अच्छा ही नहीं लगा, ठीक है, और लगेगा भी कैसे ना, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड है ये फिल्म। एंड अब देखना है कि आगे होता है क्या। तो कई ऐसे सॉन्ग्स हैं हमारे पास आपके लिए, मगर चलो ये गीत अब आप सुनिए।

बहुत ही बढ़िया सा गीत, बहुत ही बढ़िया सा गीत। तो आगे बढ़ते हैं और एक लाजवाब लाइनें हैं कुछ। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, इंसान ने कोयल से कहा कि तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। हाँ जी, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, सागर से एक इंसान ने कहा कि तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा कि तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो आपको पता है, तब तीनों ने एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आई बात समझ में? हाँ जी, तो चलो एक और गीत सुनते हैं। और वैसे तो बहुत सारे नगमे हैं हमारे पास, मगर आप इसे सुनिए। इसे शाहरुख खान और काजल पर फिल्माई गई फिल्म माय नेम इज खान से हमने आपके लिए चुन कर लाए हैं।

हाँ जी, सोलफुल ब्यूटी ऑफ सजदा, बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म माय नेम इज खान से ली गई, और सिंगर राहत फतेह अली खान, उनके साथ शंकर महादेवन एंड ऋषा शर्मा। सो आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और मैं शशि जोखन होली हूँ आपके लिए, आपके साथ, और पूरे 7 बजे तक हमारा और आपका साथ इसी तरह बना रहेगा। सो आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज पारिवारिक विषय में आप सोच ही रहे होंगे कि कौन से टॉपिक लेकर आने वाले हैं, तो वैसे तो आज के समय में अगर किसी ऐसी समस्या की बात की जाए जिसे ज़्यादातर लोग झेल रहे हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं उनकी सुंदरता पर भी पड़ता है, तो वो है बालों का झड़ना, पतला होना, कमज़ोर होना और कम होना। ठीक है, तो आज इसी पर हम बातें करेंगे, और ख़ास तौर से एक महिला है भारत में, कानपुर भारत में, जिनकी 5 फुट लंबी बाल जमीन छूती है, तो इसी के बारे में कुछ बातें करेंगे। अभी तो आप मनोरंजन उठाइए, जो गीत मैं आपके लिए चुनकर लाई हूँ।

0: हाँ जी, कैसा बीत रहा है आपका समय? क्या कर रहे हो आप? भोजन बना रहे हो या तैयारी कर रहे हो घर के लिए? मगर देखिए, आप हमारा साथ दे रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो देखते हैं कि हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें हमें कभी कभी इतना मजबूर कर देती है कि हमें पता ही नहीं होता है हम कैसे अपने जीवन के जो बहुमूल्य वक्त होते हैं, कीमती वक्त होते हैं, उसको हम कैसे गंवाते हैं। तो ये बहुत ही जो है, मैंने इसको सिलेक्ट करके आज लाई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जो छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में मैं जो भी डालती हूँ, उससे अगर हमें कुछ भी सीखने को मिले तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। सो इसीलिए ये आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ। तो ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम। और
1: शिक्षक ने बच्चों से बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास 86,400 रुपए हैं और अचानक कोई लुटेरा आता है, 10 रुपए छीन कर भाग जाता है। बताओ तुम क्या करोगे? क्या तुम उसके पीछे भागोगे उन 10 रुपयों को वापस पाने के लिए, या फिर अपने बचे हुए 86,390 रुपए संभाल कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाओगे? ज्यादातर बच्चों ने एक ही जवाब दिया, सर हम 10 रुपए जैसी छोटी रकम के लिए अपना बाकी पैसा खतरे में नहीं डालेंगे, हम अपने बचे हुए 86,390 रुपए लेकर आगे बढ़ जाएंगे। शिक्षक बोले, तुम्हारा जवाब सुनने में सही लगता है, लेकिन सच कहूं, असल जिंदगी में ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। बच्चे हैरान हो गए। शिक्षक ने कहा, मैंने देखा है लोग उन 10 रुपयों को वापस पाने की जिद में चोर के पीछे भागते हैं, और इस भाग दौड़, गुस्से और उलझन में अपने बचे हुए 86,390 रुपए भी गंवा बैठते हैं। अब बच्चे सचमुच चौंक गए। उन्होंने पूछा, सर ये कैसे संभव है, ऐसे कौन करता है? शिक्षक ने कहा, क्योंकि मैं यहाँ रुपयों की बात नहीं कर रहा, ये 86,400 रुपए नहीं बल्कि हमारे दिन के 86,400 सेकंड हैं, और वो 10 रुपए सिर्फ 10 सेकंड की नाराजगी, गुस्सा, किसी की बात, किसी का व्यवहार, कोई छोटी सी घटना है। लेकिन होता क्या है, हम उन 10 सेकंड की बात को पकड़ लेते हैं, उस पर सोचते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, और नतीजा ये होता है कि बाकी के 86,390 सेकंड भी खराब कर देते हैं। बच्चों को शिक्षक की बात समझ आ गई थी। छोटी बातों को वहीं छोड़ देना सीखो, वरना चंद लम्हों का गुस्सा पूरे दिन की ताजगी, खूबसूरती और सुकून लूट लेता है। जिंदगी में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी 10 सेकंड छोड़ देना पूरे 86,390 सेकंड बचा लेता है।
0: बहुत ही सही उन्होंने कहा ना कि छोटी छोटी बातों को हम अपने दिमाग में दौड़ाते ही रहते हैं, दौड़ाते ही रहते हैं, एंड देन इसको लेकर हमारे पूरे दिन बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे कभी कभी हमारे कहते हैं ना कि अगर किताब में कुछ एक पन्ना फट जाए तो एक ही पन्ना आप पूरी निकाल दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा जो आपका पूरा का पूरा बुक है जो, उसे उठाकर बहा दें। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में कभी कभी होती है, तो इससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है ज़रूर।

जी, बहुत ही बढ़िया सा ये नगमा, ब्यूटीफुल सॉन्ग, उम्मीद है आपको पसंद आए। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से ली गई, रणवीर सिंह और आलिया पर फिल्माई गई, एंड बस ऐसे कई नगमे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑफकोर्स आपको मालूम ही होगा कि भारत इस समय ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन सोर्स ऑफ माइग्रेंट्स है। पता है आपको ना? पता है? नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड शिफ्ट है एंड अ वेरी पॉजिटिव वन, बहुत ही पॉजिटिव है। भारतीय ऑस्ट्रेलियंस अब कंट्रीब्यूट करते हैं $5.8 बिलियन टैक्सेस में प्रतिवर्ष, ऑस्ट्रेलिया की आमदनी के जो है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये पहली बार है सिंस जब से ये लोग रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं, इंडिया ने भारत को, भारत नहीं, भारत ने इंग्लैंड को पछाड़ दिया है, और माइग्रेंट जो इंडियन माइग्रेंट्स है उसकी इतना ज़्यादा मात्रा में आप लोग वहाँ आ गए हो कि अब बात क्या है। अब इसमें देखिए, ये खुशी की बात भी है और थोड़ा चिंतित करने वाली बात भी है, क्योंकि आप सभी को पता है अभी क्या क्या माहौल छाई हुई है दुनिया भर में एथनिक लोगों को लेकर। सो ये एक अच्छी बात है, मगर इसमें इतना भी खुशी नहीं मनानी चाहिए कि आगे चलकर कुछ हादसा वगैरह होने लगे। सो काम डाउन एंड टेक इट ईजी, ठीक है? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप ऐसा ही करोगे। और अगला गीत जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो भी एक बहुत ही बढ़िया सा नगमा है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप इसे एंजॉय करेंगे। बहुत ही बढ़िया सा नगमा है ये। इस बार अरिजीत सिंह की आवाज़ में है, मुस्कुराने

आप सुन रहे थे ये बहुत ही बढ़िया सा नगमा, एंड ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह के आवाज में ये गीत। और अब तेरा फितूर, बहुत ही पॉपुलर गीत, बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं।

0: हाँ जी, शाम के 6 बज चुके हैं एंड मौसम आपका तो बहुत ही बढ़िया है. ब्रिस्बेन में कैसा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं? ना बहुत, कभी धूप तो कभी छांव, ठीक है? या 18 डिग्रीज, 18 डिग्रीज से फिर नीचे तक, अबाउट लोएस्ट 11 तक आप जा सकते हो. बहुत ही बढ़िया मौसम है, कूल. एंड देखिए, अब हम आगे चलते हैं और सुनते हैं कि जो आहान एक बच्चा है वो अपने जीवन के बारे में क्या कहता है.
1: मम्मी, लाइफ क्या है बेटा?
2: लाइफ मेरे लिए है बाहर जाओ, खेलो, दोस्तों के साथ मिलो, कभी बार मॉल चले जाओ दोस्तों के साथ, बट नो स्पेंडिंग्स, सेव करो, ग्रीनरी को देखो, पार्क में जाओ, फैमिलीज को मीट करो, टॉक टू एडल्ट्स, लर्न अबाउट देयर लाइफ, एंड थोड़ा बहुत अच्छा होता है. बट मी बिफोर, मैं सच बोलूँ ना, जब मेरे पास फोन होता था या तो फिर टैब होता था ना, इट वॉज एन एडिक्शन. स्क्रीन टाइम 10 आवर्स, 11 आवर्स तक जाता होता था. जब मैं कोई पढ़ाई करता भी नहीं था, मैं तो गेम ही खेलता था, यूट्यूब देखता था या तो फिर टिकटॉक पे था. मैं सच बोलूँगा, आई लव माई न्यू लाइफ मोर देन माई ओल्ड वन नाउ, बिकॉज अब मुझको बाहर की चीज़ें दिखते शुरू हो गए. जब फोन आपके सामने होता है ना, तो आपको दूसरी चीज़ें दिखने ही बंद हो जाते हैं. मेरे खिलौने के साथ नहीं खेलता था, कुछ नहीं करता था, बट जब मम्मी ने फोन लिया या तो फिर टैब लिया, तो फिर फाइनली मुझको पता चला कि यार व्हाट आई वाज मिसिंग ऑन पूरे टाइम, जो मैं फोन के अंदर इतना घुस के नहीं देख रहा था बाहर. सो द लेसन इज, डोंट वॉच फोन इन टैब अलॉट, गो आउटसाइड, मीट अदर पीपल, गो फॉर ग्रीनरी, गेट सम फ्रेश एयर, इट विल ऑल्सो गेट यू रिलैक्स.
1: पार्क चले जाओ, दोस्तों से मिल लो, कुछ रियल एक्टिविटी करो, नॉट ओनली विद द फिंगर्स. और ये हुआ था जब मेरे नया नया बिजनेस शुरू किया था, और आहान पहले मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था, और ही वॉज नॉट ऑन डिवाइस. फिर होता क्या है, बच्चे हैं, बच्चों का मन चंचल होता है, कभी ना कभी तो फिसलता है, तो बीच में इसको भी थोड़ा सा ये एडिक्शन आया था. एंड आई एम वेरी हैप्पी ही ओवरकम इट. एंड उसने मुझे बोला कि मम्मा, आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद एवरीवन, कि मैं सब बच्चों को बोलूं कि ये बहुत गलत है, अगर आप सिर्फ डिवाइसेस में ही देखते रहोगे तो आप अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी सकते. डू यू अग्री?
2: यस, आई एग्री.
1: ऑलराइट, सो गाइस, अगर आपके बच्चे भी बहुत डिवाइस देखते हैं, मेक श्योर उनको आप बाहर निकालो, वॉक पे लेके जाओ, उनके रियल फ्रेंड्स उनको बनाने के लिए आप एनकरेज करो. हैव अ लवली डे,
2: बाय.
0: आई होप आप एंजॉय किए हैं. ये बहुत ही बढ़िया एडवाइस आहन की ओर से, बहुत ही प्यारा सा बच्चा, और कितनी अच्छी बातें बोलता है कि चलो बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, रियल दोस्त बनाते हैं, ना कि कंप्यूटर में बस मोबाइल फोन द्वारा दोस्त बनाने का ना. तो ठीक है, 6 तो बज ही गए हैं, कुछ ही देर में मैं लाऊंगी आपके लिए पारिवारिक विषय, मगर चलो अभी हम सुनते हैं लता जी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारे से गीत, पुकार, फिल्म पुकार से ली गई.

ही प्यारा सा ये नगमा, एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह से इस दुनिया में अपने जो हमारी जो जीवन हमें मिली है, हम किस तरह से इसे देखते हैं, और हमारे बच्चे क्या चाहते हैं हमसे, और हम क्या कर रहे हैं उनके लिए. तो मैं तो हर बार कहती हूँ कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ इज़ सो प्रेशस, बहुत ही एक्सट्रीमली प्रेशस है, एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो हमें ये जीवन मिली है हम उसे अच्छी तरह सही ढंग से बिता पाए. और हमें जितना भी समय इस धरती पर मिली है हम हंसी खुशी के साथ एक साथ मिलकर एकता के साथ रहे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और हमारे जीवन ईश्वर की देन है, और ईश्वर ही हमें यहाँ से ले जा सके तो ही बहुत ही बढ़िया बात है. मगर कभी कभी देखा जाए तो क्या क्या नहीं हो जाता. अभी आप शायद सुने होंगे यूरोप में क्या हुआ है, लंदन में एक एक बहुत ही युवा की कत्ल हो गई है, और वो भी हमारे एथनिक पर्सन की वजह से. और ये सभी बातें दुनिया भर में फैल जाती है, और इसकी वजह से सिर्फ एक बंदे की गलत हरकत की वजह से पूरे कौम, पूरे कम्युनिटी के लोगों का नाम बहुत चिंतित में हो जाते हैं लोग, एंड उनके विरुद्ध लोग काम करने लगते हैं. सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी कदम उठाए एज एन इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी, हम जिस तरह से जो भी हरकतें करते हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पड़ेगी. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हो तो ट्राई कीजिए अच्छी अच्छी बातें लोगों को समझाए, सिखाए, सुनाए, बताए, ताकि लोग सही राह पर चल सके. ऐसा ना करें कि एक दो लोगों की वजह से हमारा, हम सभी ऐसे ऐसे जीवन जीने लगे जो हम नहीं चाहते हैं. ठीक है, सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. आप कोशिश कीजिए, लोगों को सलाह दीजिए, अच्छी अच्छी बातें बतलाइए लोगों को, अच्छी बातें बतलाइए ताकि उनकी जो दिमाग है उसमें ठंडक पहुँचे. ऐसे ना भड़कोली बातें ना करें जिसकी वजह से लोग गलत हरकतें करने लगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप किसी भी कौम के हो, किसी भी जाति के हो, ये हम सभी के लिए लागू होती है. सो हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ रहते हैं, अच्छी तरह से सही ढंग से रहे. जिन हम अपने देश छोड़कर जहाँ भी आए हुए हैं वहाँ सही ढंग से रहे. ऐसे ना रहे कि हमारी यहाँ पर पूरी हक है. अभी आप देख रहे हो दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है. लोग, हम सोचते हैं कि हमारे पास यहाँ की सिटीजनशिप है तो हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता. ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है. जब पानी सर तक पहुँच जाती है ना तो लोग क्या कदम उठाते हैं उसकी भरपाई हम ही को करनी पड़ती है. सो प्लीज़ सोचिए, समझिए और सही काम कीजिए. ठीक है, तो चलते हैं, एक और गीत हम सुनते हैं. कुछ ही देर में हम अभी तो हम ये जो गज़ल है इसे आपके लिए पेश करते हैं, फिर हम चलेंगे भूले बिसरे नगमों की ओर. फिल्म अर्थ से ली गई जगजीत जी की आवाज़ में. वो आज हमारे बीच तो नहीं है, मगर उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो गीत हैं, उनके जो गज़लें हैं हमारे साथ, और हम उसका जो भरपूर लुत्फ़ उठाते हैं.

हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा नगमा आप सुन रहे थे, और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ जी। अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो तहजील से वैसे तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, एंड अगर आप शुरुआत से ही हमारे साथ हो तो एक बार फिर मैं आपको याद कर रही हूँ, और एंड उम्मीद कर रही हूँ कि आपका दिन बहुत ही बढ़िया जा रही होगी, एंड आप हमारे साथ दे रहे हो गीतों का जो संगम है, जो लाई हुई हूँ आपके लिए, सो होपफुली आपको पसंद आ रही है। सो चलते हैं पारिवारिक की ओर, पारिवारिक विषय की ओर। तो देखिए, जो आज मैं बता रही थी आपको कि आज बालों के बारे में चंद बातें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाल की समस्या बहुत से लोगों को होती है, और ज़्यादातर बाल का झड़ना, पतला होना, कमज़ोर होना और कम होना, ये सब बहुत ही आम बात हो गई है आजकल, एंड लोग बहुत ही चिंतित रहते हैं इसको लेकर। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो इधर तो लोग चिंतित होते हैं अपने बालों को लेकर, मगर उधर एक महिला है जो कानपुर भारत में रहती है, उस महिला की जो वो अपने लंबे बालों को लेकर काफी चर्चा में रहती है। तो ऐसी क्या वो करती है अपने बाल के साथ कि उनके बाल इतने घने और लंबे हैं? तो वही रुचि कहती है कि अपने लंबे काले और घने बालों के लिए तो मैं जानी जाती हूँ, और मेरे बाल इतने लंबे हैं कि वो जमीन को छूती है, और ये लंबे होने के साथ साथ काले और मजबूत भी है। तो देखिए, आप ही सोच रहे होंगे कि ये उनकी राजी क्या है, कि कैसे वो ऐसे मुमकिन हो सकता है ना। तो देखिए, उनका कहना है कि अपने बालों को हेल्थी बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ किसी तेल या घरेलू नुस्खे की मदद नहीं ली है, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल के साथ अपने खानपान में भी बदलाव किए हैं। तो बालों का धोना और उनकी देखभाल, हर चीज का उन्होंने खास ख्याल रखा है। तो रुचि ने बताया है कि बालों की असली मजबूती के लिए उसकी सिर्फ बाहरी केयर नहीं करनी चाहिए, बल्कि बालों की जो असल मजबूती शरीर के अंदर से आती है। तो आप क्या खाते हैं, इसका असर भी आपके बालों की सेहत पर पड़ता है, और अगर शरीर में सही पोषण नहीं है तो कोई भी महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी आपके बालों को सेफ नहीं रख सकते हैं। ये तो आप मानते ही होंगे ना कि हम कितने तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मगर देखा जाए तो काम नहीं करती है। सो उनका कहना है कि उन्होंने अपनी डाइट में प्रोटीन और वाइटमिन वाली चीजों को शामिल किया है, इसके साथ ही ओमेगा 3 से भरपूर चीजों का सेवन किया है जो बालों को अंदर से पोषण देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही और सीजनल फ्रूट्स खाती है, और भरपूर मात्रा में पानी भी पीती है। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं, मगर हम कितना इसे करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम सभी इंडिविजुअली ही जानते होंगे। वैसे तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में भी रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें बालों के मिनरल्स और वाइटमिन्स कितने जरूरी है ये साझा किया गया है। सो आप इसे भी सर्च कर सकते हैं या बुक लाइब्रेरी से ला सकते हैं ना। तो हेयर जो है, हमारा बाल झड़ना एक आम समस्या है जिसे मिनरल्स और वाइटमिन से भरपूर डाइट लेकर सुधारा जा सकता है। वाइटमिन और मिनरल्स सामान्य सेल्स की वृद्धि और कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, और इनकी कमी से बाल झड़ने की जो समस्या हो सकती है ये कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। हालांकि सही आहार आसानी से उपलब्ध है, आप मानते होंगे ना, फिर भी मगर ये जानना जरूरी है कि कौन से वाइटमिन्स और कौन से मिनरल्स बाल झड़ने से रोकने में मदद कर सकती है। तो ये आप अपने डॉक्टर से पता लगा सकते हैं, खास तौर से कौन से वाइटमिन और मिनरल्स की कमी है आपके बॉडी में, ये आपके डॉक्टर ब्लड टेस्ट वगैरह करके आपको बतला सकते हैं। तो कई लोगों को बाल में तेल लगाना पसंद नहीं है, लेकिन रुचि कहती है, उन्होंने बताया कि वो आज भी
अपने बालों में तेल लगाती है। बिना तेल लगाए वो बालों को धोने से बचती है और तेल लगाकर हाथों से बालों को मैसाज भी करती है। ये हमारे स्कैल्प को पोषण देता है और जोड़ों को भी मजबूत करता है। तो आपको तो पता ही होगा, शायद आपको याद होगा, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमारे बालों में तेल लगाती थी, स्पेशली माँ तेल लगाती थी, मैसाज करती थी ना हर बार। तो अभी शायद लोग कम करते होंगे, मगर वो कहती है, रुचि कहती है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो ये भी कहती है कि इसके साथ ही बालों पर ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करने से बचती है। वो हेयर कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग या हीट स्टाइलिंग जैसे चीज़ों से दूर रहती है। उनका मानना है कि ये सभी चीज़ें बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर देखा जाए तो आजकल लोग इन्हीं चीज़ों का सहारा ज़्यादातर लेते हैं ना। तो बस बचकर रहिएगा इनसे। और अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी कहते हैं ना, उसमें भी पब्लिश्ड है एक आर्टिकल जिसमें बालों के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स के बारे में बताया गया है कि क्या कि ये बालों को कैसे डैमेज करते हैं और उनको हेल्थी रखने की टिप्स भी शेयर करते हैं। तो याद रखिएगा कि हम ये जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आगे हमने कहा हेयर कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग या हीट स्टाइलिंग जैसे चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ये हमारे बाल के लिए ठीक नहीं है। फिर इसके आगे रुचि क्या कहती है, वो कहती है कि बालों को धोने का भी खास तरीका होता है। वो अपने बालों को ज़्यादा नहीं धोती है, वो हफ्ते में दो बार ही बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश करती है। इसके साथ ही हेयर को ड्राई करने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से लगड़ने के बजाय धीरे धीरे सुखाती है, यानी टॉवल से बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं लगड़ते हुए उसको ड्राई करती है, ये धीरे धीरे सुखाती है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में भी पब्लिश हुई एक रिसर्च में बालों को सुखाने में दी गई या की गई गलतियां और सही तरीके को बताया गया है। सो ये सब रिसर्च की गई बातें मैं आपको बता रही हूँ। और उन्होंने आगे कहा कि स्ट्रेस कम रखना बहुत ज़रूरी है, हमें स्ट्रेस कम रखना बहुत ज़रूरी है। रुचि ने बताया कि वो स्ट्रेस लेने से भी बचती है। दरअसल स्ट्रेस का जो असर है वो बालों पर दिखने लगता है, और दिखने लगता है यानी बाल झड़ने लगते हैं, लोग गंजापन होने लगता है और बाल बहुत ही पतले हो जाते हैं, और जो होस्टेल वगैरह लोग बांधते हैं ये सब इसमें दिखने लगता है ना कि कुछ ठीक नहीं है। तो पूरी नींद लेने और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश वो करती है, एंड वो करती है, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताती है, वो बताती कि वो क्या करती है। क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि इनकी जो बाल है वो 5 फुट लंबे बाल है उनकी, और उसकी देखरेख वो खुद करती है। तो इसीलिए मैंने उसकी एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि वो क्या क्या क्या इस्तेमाल करती हैं, क्या नहीं करती हैं। तो जैसे हमने कहा कि इट्स इम्पोर्टेंट, जब अपने डॉक्टर के पास आप जाएं तो उनसे कहिए कि आप ब्लड टेस्ट कीजिए कि हमारे शरीर में क्या कमी है कि हमारे बाल झड़ते हैं वगैरह वगैरह, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो देखिए ये सभी तो आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए हैं। इनमें से जो भी मोतियाँ आप चुनना चाहें आप चुन सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, और जो ना ठीक लगे आप उसे बेशक बेअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सही ढंग की चीज़ों को इस्तेमाल करें, ताकि आगे चलकर ऐसा ना हो कि हम रिग्रेट करें और जब बाल कम हो जाए ना तो फिर ये बहुत ही मुसीबत की बात होती है। तो अपने बाल को संभाल कर रखिए। किस तरह की डाई वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो कैसे आप डाई यूज़ करते हैं ये भी ध्यान में रखिए। कभी कभी डाई में केस काफ़ी प्रोडक्ट्स मिला हुआ होता है जो हमारे हेयर के लिए ठीक नहीं होती है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, एक गीत सुनते हैं, एंड इस बार हमने शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में गीत लाई हूँ आपके लिए।

सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम और मैं शशि जोगन आपका साथ पूरे 7 बजे तक दूंगी। और हाँ जी, आज मैंने अंग्रेजी शब्द जो बताने थे, इंग्लिश शब्द मैं बस ओवरलुक ही कर दी। आज का जो शब्द है वो है फ्यूचर। तो आप ढूंढिए जो हिंदी शब्द है वो क्या है, आप उसे ढूंढ कर रखिए और मैं कुछ ही देर में अपने ओर से आपको बतलाऊंगी कि उसकी जो सही शब्द है हिंदी में क्या है। तो चलते हैं एक और गीत सुनते हैं। और हाँ जी, ये तो भूले बिसरे नगमों की बारी है, यानी पुराने गीतों का संगम है, सदाबहार गीत आपके लिए। मगर आप तो जानते हैं कि फिरोज जी हर रविवार को संगीत की झनकार लेकर आते हैं आपके लिए 10 से 12 बजे तक, और ख़ास तौर से यादों का सफ़र, और वो 10 से 11:30 बजे तक है। तो आप उन्हें ज़रूर सुनिए, वो बहुत सारे गीत लेकर आते हैं, ऐसे नगमे लेकर आते हैं जो जो डिफरेंट एरा से लेकर आते हैं, जैसे कि 40s 50s 60s के नगमे। और हम तो कोशिश करते हैं कि ऐसे सॉन्ग्स लेकर आएँ आपके लिए इस प्रोग्राम में, मगर वो ख़ास तौर से उनकी ये ही इज़ वेरी गुड एट दैट, यादों का सफ़र जो है आप ज़रूर सुनिएगा उनके कार्यक्रम।

हाँ जी, अभी हाल ही में आप शायद सुने ही होंगे, दिल्ली में एक ऐसी हादसा हुई है जो बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और दिल्ली में एक होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई है। दूर दराज के इलाकों से लोग अपने मरीजों के साथ उनके बेहतर इलाज और स्वस्थ जीवन की उम्मीद लेकर होटल में ठहरने आए थे। तो होटल के पास ही दिल्ली के कई नामी अस्पताल वहाँ पर है, जहाँ देश के दूसरे हिस्सों के साथ कई ऐसे देशों से लोग आते हैं। इवन लोकल लोग भी जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि सभी कुछ दूर दूर होते हैं ना, तो ये लोग वहाँ जाकर रहते हैं और इलाज वगैरह कराते हैं। तो इनमें से एक बदनसीब बंदा विवेक अग्रवाल भी शामिल है, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनके साथ उनके परिवार के 7 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये। गुरुग्राम में रहने वाले इस बंदे के घर पर मातम छाई हुई है। नगर की आग ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया है। पूरा घर वीरान पड़ा था और उनके खाली घर के बाहर आस पड़ोस के जो लोग वे जमा थे, और बच्चे बच्चे कुचे जो लोग वो बस शोक मना रहे थे बाहर बैठकर। तो ये ऐसी हादसाएं हो जाती हैं, मगर देखा जाए तो जब हम ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी तरह का जो दूसरा रास्ता हो जिससे लोग निकल सके ना, मगर इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ था नहीं। तो बहुत ही जुड़ा जुड़ा सभी साइड साइड में बिल्डिंग्स थे, पीछे भी बिल्डिंग, तो रास्ता सिर्फ एक ही तरफ से था। एंड जब आग लगी तो ये हादसा हो गया। ये बहुत ही दुखित सूचना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कहीं पर भी हम रहने जाए तो वी मेक श्योर कि एग्जिट एरिया, चाहे हम किसी इवेंट में भी जाए, किसी हॉल में जाए, तो हमें देखना चाहिए कि एग्जिट कहाँ पर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये थी एक सूचना आपके लिए। और साथ में दिल्ली में आयोजित क्वाड एक विदेशी मंत्रियों की बैठक हुआ, और इसमें इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि फिजी को क्वाड स्पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप से लाभ होने वालों में पहला प्रशांत द्वीप देश बनाया गया है। संयुक्त राज्य

जे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के मंत्रियों ने पुष्टि की है कि पायलट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना जो है वो फिजी में शुरू होगी, जिससे प्रशांत क्षेत्र में लंबे समय से चलती आ रही जो क्षमता संबंधी चुनौतियों का समाधान हो। तो ये है थी सूचना आपके लिए। एक और गीत हम सुनते हैं, और जो अंग्रेजी शब्द मैंने आपको बताई थी ना, वो है एक्चुअली वो है फ्यूचर।

हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा नगमा। और समय तो बहुत ही कम है हमारे पास, सिर्फ 15 मिनट ही बचे हुए हैं। और जो शब्द है वो है अंग्रेजी शब्द इज फ्यूचर। आप हिंदी शब्द ढूंढ कर रखिएगा, मैं कुछ ही देर में आपको सही आंसर बताऊंगी, ठीक है?

हाँ जी, फिल्म सावन की घटा से ली गई ये नगमा आशा भोसले की आवाज में और मनोज कुमार और शर्मिला टैगोर पर ये फिल्म आई गई थी। तो देखिए चलते हैं, ये जो अंग्रेजी शब्द मैं आपको बताई थी ना, तो इसके जो हिंदी शब्द है वो अंग्रेजी जो वर्ड था वो फ्यूचर, और उनकी जो मुख्य हिंदी अर्थ है भविष्य। ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स भविष्य, हिंदी में बोलते हैं ना ऐसे। तो देखिए भविष्य आप वर्तमान के बाद आने वाला समय को भी को भविष्य कहते हैं ना, फ्यूचर। और आने वाला समय हम कहते हैं जो समय अभी बाकी है वो आने वाला समय होता है। ठीक है, सो ऐसे अलग अलग टेंस में हम इसे बना सकते हैं। भविष्यकाल, भविष्यकाल क्या होता है, वो क्रिया का वो रूप जिससे पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं। तो फ्यूचर हिंदी में अगर कोई आपको कोई फ्यूचर कहे, फ्यूचर का हिंदी शब्द क्या है, तो आप कहिए भविष्य। ठीक है, तो चलिए अगला गीत जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो जॉय मुखर्जी और आशा पारेख पर फिल्माई गई और मोहम्मद रफ़ी जी की मधुर आवाज़ में, लाखों हैं यहाँ दिल वाले, बहुत ही पॉपुलर गीत ये। तो आप इसे सुनिए एंड एन्जॉय कीजिए।

दूसरी ओर आपको लेकर चलती हूँ 1955 की ये फिल्म से ली गई नगमा। फिल्म का नाम मुनीम जी, देवानंद और नलिनी जयवंत पर फिल्माई गई।

0: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा नगमा, और ये किशोर दा की आवाज में ऑफ कोर्स। तो देखिए चलते हैं, अगर आप ना होते तो हम ना होते, अगर आप ना होते तो हम ना होते, ये महफिल ना होती, ये रौनक ना होती। ठीक है, तो इसी गीत के साथ मैं कार्यक्रम को छोड़े जा रही हूँ। स्वताक्षी अभी आ जाएगी आपका साथ देने के लिए, उनका भी साथ दीजिए। एंड अप्रिशिएट द डे वी हैड
1: इस नई रोशनी के लिए।
0: थैंक यू सो मच, आपने हमारा साथ दिया।

नमस्कार। वीकेंड्स गुजर रहे हैं जबरदस्त मजेदार, और सोचा गया कि क्यों ना अपने इन वीकेंड्स को खास बना दिया जाए अपने ही रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स के साथ। फेवरेट सॉन्ग को रेडियो ब्रसवानी पर सुनने का मजा ही अलग है, और आपने हम तक रिक्वेस्ट पहुंचाई है तो हम उसे प्ले ना करें ये हो कैसे सकता था। इसीलिए आज एक बार फिर से फरमाइशी गीत लेकर आपकी सदाक्षी आ गई है रेडियो ब्रसवानी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, सिर्फ आपके लिए, इसलिए क्योंकि बहुत सारे गाने बढ़िया बढ़िया से आपने रिक्वेस्ट किए हैं। मेरे पास आज जो लिस्ट है वो लाजवाब है, मतलब ये सभी गाने सुनकर मुझे भी बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करें हमारे रेडियो प्रसवानी पर फरमाइशी गीतों के सफर की। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से सताक्षी है आपके साथ, और मेरे साथ कई ऐसे लाजवाब से ट्रैक्स हैं जो मैं आज आपको नजर करने जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन्हें जरूर सुनेंगे। सो चलिए, अगर अभी तक आपने हमें रिक्वेस्ट नहीं किए हैं अपने गाने, तो लिख भेजिए रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पर। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं इस अगले ट्रैक के साथ, और इसके उस पार होगी उस मेल पर बात जो है आज की पहली फरमाइशी गीतों की मेल। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रसवानी, सुनते रहिए सताक्षी को।

पहली रिक्वेस्ट मुझे की है मेलबर्न से प्रिया ने। प्रिया कहती हैं, हाय सताक्षी, रेडियो प्रस्वानी को बहुत टाइम से सुन रही हूँ और बेसिकली मैं मेलबर्न में स्टडीज के लिए हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जब फरमाइशी गीत सुनती हूँ। आज भी ऐसा लगता है कि आप लोग इसको जिंदा कर देते हैं। ये वो शोज थे जो पहले आया करते थे जब सॉन्ग रिक्वेस्ट लोग चिट्ठियों के ज़रिए करते थे और आप इस मेल रिक्वेस्ट को भी इतना ख़ास बना देती हैं कि अपनी रिक्वेस्ट किए बिना रहा ही नहीं जाता है। आज मैं भी रेडियो प्रस्थानी पर पहली बार अपनी रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ और ये गाना जो है ये मैं उसको डेडिकेट करना चाहती हूँ जिसने मुझे हाल ही में प्रपोज़ किया है। बेसिकली ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये साथ जो है मेरा उसके साथ बना रहे और प्रपोजल मुझे भी एक्सेप्ट है और हम दोनों के लिए गाना बहुत ही खास है जिसे आज मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ज़रा हटके ज़रा बचके से तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, ये गाना ज़रूर प्ले कीजिए। ये गाना इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसी गाने को गाकर उसने मुझे प्रपोज किया था। बहुत खूबसूरत प्रिया आपने बात कही सबसे पहले तो हमारे लिए कि आपको रेडियो प्रस्थानी सुनना अच्छा लग रहा है और हमारा ये सफ़र फरमाइशी गीत आपको बहुत मज़ा देता है, अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो हमारी तारीफ़ों के लिए शुक्रिया। उसके बाद बहुत खूबसूरती से आपने अपने मोहब्बत को भी हमसे शेयर किया बांटा, लेकिन भाई उनका नाम भी शेयर कर दीजिए ताकि हम उनके नाम को भी अनाउंस कर सकें। हालांकि इश्क में नाम लेकर उसे बदनाम नहीं करते, लेकिन ये लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के नाम लिए जा सकते हैं। आप सुनना चाहती हैं ज़रा हटके ज़रा बचके से तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। मतलब ये गाना सच में, मैं उनमें से हूँ जिनको नए गाने बहुत पसंद नहीं है, बट इस तरह के गाने जब आते हैं ना तो आप खो जाते हैं उनमें। तो अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना है, सचिन जिगर का म्यूज़िक है, अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स हैं, सारा अली खान और की कौशल स्क्रीन पर हैं और हम इमेजिन कर रहे हैं इस वक्त आपको और आपके उनको जिन्होंने आपको ये गाना गाकर प्रपोज किया है। तो ज़रूर इन्जॉय कीजिए और गॉड ब्लेस यू, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें। थैंक यू सो मच हमें लिखने के लिए।

0: गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 Soccer Tournament presented by Queensland Fiji Football Association. Due to the rainy weather, QBOG ka Sunday 31st May game postpone ho gaya hai. Ab games honge Thursday 4th June se Sunday 7th June tak aur finals Sunday 14th June ko hoga at Acacia Ridge Soccer Club, 174 Mortimer Road, Acacia Ridge 4110. Ground pe chalega full soccer ka tashan, opens, masters and legends. Har match mein energy, excitement aur crowd ka shor. Aur bhai, khane ka scene to aur bhi dangerous hai. Fiji style barbecue, spicy duck curry, yummy pulao aur thandi thandi Fiji ice block. To in dates par ghar par mat baithna. Family, friends ke saath aa jana QBOG Soccer Tournament 2026 mein. Zyada jankari ke liye call kare Abdul Rahim 0423-342-272 ya phir Secretary Ray Ali 0413-868-240 aur visit karo briswani.com ke event section mein. QBOG 2026 aapka intezaar rahega.
1: गाने पर ये है फरमाइशी गीत। ये वो गाने हैं जो आपने हमें रिक्वेस्ट किए हैं। वैसे अगर नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है हमें रिक्वेस्ट करना। बस हमें रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज या वेबसाइट पर लिख भेजिए कि कौन से गाने हैं जो आप सुनना चाहते हैं, आपको पसंद है। हम डेफिनेटली उन गानों को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी, सुनते रहिए फरमाइशी गीत सताक्षी के साथ।

चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगली फरमाइश किसकी है। और ये है पुणे से, और पुणे से हमें लिखा है संगीता सिंह ने। संगीता कहती है, हाय सताक्षी, रेडियो ब्रिस्वानी सुनती रहती हूँ और अपने कामों को करते हुए जब इसे सुनती हूँ तो वक्त कैसे गुजर जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। फरमाइशी गीत एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर अपने गाने रिक्वेस्ट करते हैं और प्ले भी किए जाते हैं। आज मेरा भी एक गाना मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम दिल दे चुके सनम से। और ये बात जो है ये मैं इस गाने के थ्रू अपने पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ, बिकॉज वो मेरी शादी के लिए मुझे फोर्स कर रहे हो और मैं उनको बोल चुकी हूँ कि आई एम इन लव विथ समवन, तो मुझे उसी से शादी करनी है फिर चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिया, बहुत खूबसूरत बात मुझे आपकी ये लगी सबसे पहले तो, कि आप अपने पेरेंट्स को बता रही हैं कि आप प्यार करती हैं किसी से, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ भी नहीं जा रही हैं। होता है ना आजकल के बच्चे कि भाग गए घर से या फिर कोई ऐसा कदम उठा लिया जो पेरेंट्स को पसंद नहीं आता है, तो अपनी आवाज़ उठा करके आप अपने प्यार का इजहार कर रही हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। हम दिल दे चुके सनम, ये टाइटल ट्रैक है ऐसी फिल्म का जिसे आप सुनना चाहती हैं, और इस्माइल दरबार का म्यूजिक है। महबूब ने इस गाने को लिखा है, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद सलामत ने इसे अपनी आवाज से सजाया है। तो इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को हमारे साथ। हम विश करते हैं कि आपके पेरेंट्स राजी हों और ये रिश्ता मुकम्मल हो। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। ये ट्रैक आपके लिए।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत। आपकी सताक्षी आज एक बार फिर से फरमाइशी गीतों के सफर में आपके साथ है और हम आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स इस वक्त प्ले कर रहे हैं आपके लिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने दिल के जज्बात हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं हमारे रेडियो प्रस्वानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। तो लिखते रहिए हमें और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी आपके साथ।

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: अगला मैसेज मुझे मिला है इस वक्त, ये ब्रिस्बेन से है और ये है राहुल जैन का। राहुल कहते हैं, हेलो सताक्षी, और मैं यहाँ पर ब्रिस्बेन में पोस्टेड हूँ। मेरी ज्वाइनिंग हाल ही में हुई है और सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। बड़ा मज़ा आता है जब यहाँ पर एक फैमिली जैसा माहौल बन जाता है। फरमाइशी गीत मैंने लास्ट वीक सुना था और आज मैं आपसे और जो भी यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, उन सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि बेसिकली मेरी अरेंज मैरिज फिक्स हुई है और ये पहली मुलाकात जो थी ये समहाउ बड़ी ही खूबसूरत थी। पहले मैं बहुत डरा हुआ था कि आज के टाइम पे जब मैं अच्छी जॉब में हूँ, मैं लव मैरिज करने की जगह अरेंज मैरिज करूँगा, लेकिन मुझे

जी मेरी फियांसे से ही मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, और वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत कॉपरेटिव हैं, बहुत जल्दी हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता बना है जो मोहब्बत वाले रिश्ते से अगर मैं लव मैरिज करता तो उससे कम नहीं है। आज मैं उन्हें एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, और मैंने उनको भी बोला है कि वो ये ज़रूर सुने, क्योंकि इसी गाने के ज़रिए मैं अपने जज्बात शेयर करना चाहता हूँ उनके साथ। मैं सुनना चाहता हूँ फिल्म विवाह से मुझे हक है, क्योंकि मेरी कहानी समहाउ विवाह टाइप की है। तो प्लीज़ ये गाना मेरे लिए ज़रूर प्ले कीजिए राहुल, हम ज़रूर प्ले करेंगे। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपकी मैरिज फिक्स हुई है, फियांसे हैं आपकी, आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है, और बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है मुझे तो लगता है। कोर्टशिप से लेकर शादी तक का जो सफ़र है बड़ा ही खूबसूरत होता है, खासकर तब जब आप अरेंज मैरिज करते हैं, एक दूसरे को समझने का जानने का बहुत अच्छा वक्त मिलता है। और विवाह का गाना जो आपने पसंद किया है वो तो आपके दिल के जज्बात बयां कर ही रहा है, बिल्कुल आपको हक है उन पर, और ये गाना आपके लिए और आपकी फियांसे को भी हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। एक बहुत अच्छे इंसान के साथ वो अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रही हैं। तो चलिए आप दोनों के नाम ये ट्रैक इसे सुनिए, और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो प्रस्वानी। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रिस्वानी 1701 यहां पर। फरमाइशी गीतों में हम प्ले कर रहे हैं आपकी फेवरेट सॉन्ग रिक्वेस्ट को इस वक्त। जी हाँ, वो गाने जो आपने रिक्वेस्ट किए हैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश हमारी और आपके वीकेंड को खास बनाने की शिद्दत से ये जो कोशिश है ये जारी रहेगी आगे के एपिसोड्स में भी। लेकिन फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि अगली फरमाइश किसकी है। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिस्वानी, बने रहिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए फरमाइशी की।

फरमाइशी गीतों में मेरे पास जो अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट है नंदिता जैन की, और आपने मुझे लिखा है, आपने कहाँ से लिखा है नंदिता, ये भी प्लीज अगली मेल में मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा। आप लिखती हैं कि ये मेरी पहली मेल है और रेडियो प्रिस्वानी पर यूं तो सभी शोज बहुत अच्छे हैं, लेकिन फरमाइशी गीत मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि डिफरेंट सॉन्ग्स और डिफरेंट म्यूजिक जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। और दूर दूर से लोग लिखते हैं, तो हर स्टेट के, हर देश के लोग भी इस शो से जुड़ते हैं। ये पर्सनली मेरा बहुत ही फेवरेट शो है। मेरी आज की सॉन्ग रिक्वेस्ट प्लीज शामिल कीजिएगा, मुझे एक गाना बहुत पसंद है और उसे मैं आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अखियों के झरोखों से का टाइटल ट्रैक प्लीज मेरे लिए प्ले कर दीजिए। नंदिता थैंक यू सो मच फरमाइशी गीतों को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देने के लिए, और आपकी जो रिक्वेस्ट है फरमाइशी गीतों में आज अखियों के झरोखों से जरूर हम आपके लिए प्ले करेंगे। आपने इतनी प्यारी रिक्वेस्ट की, ये गाना हम, मुझे लगता है हम सबका ही बहुत ही फेवरेट है। बहुत ही खूबसूरत गाना है हेमलता की आवाज में, जिसे लिखा है और म्यूजिक दिया है रविंद्र जैन साहब ने, और स्क्रीन पर सचिन पिलगांवकर और रंजिता कौर। आइए अखियों के झरोखों से का टाइटल ट्रैक सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिस्वानी, सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

नमस्कार, आदाब। ढलती हुई शाम कुछ ख्याल ले आती है और बस उन्हीं ख्यालात के साथ रात गुजरती है। सामीन, जब भी आपका ख्याल आता है, मेरा दिल यही कहता है कि वो इत्र की शीशी बेवजह इतराती है खुद पर, वो इत्र की शीशी बेवजह इतराती है खुद पर, हम तो तुम्हारे ख्यालों से ही महक जाते हैं। आपसे मुलाकात का समय तय है और हाजिर है गजलों का कारवां लेकर आपका रेडियो हम सफर। निलय प्रोग्राम है कारवां गजल और आपने ट्यून इन किया है रेडियो ब्रिस्वानी। साज तैयार हैं, सुर सजे हुए हैं, तो आगाज करते हैं महफिल का। अदा देखो नकाबे चश्म वो कैसे उठाते हैं, अदा देखो नकाबे चश्म वो कैसे उठाते हैं, अभी तो पी नहीं फिर भी कदम क्यों डगमगाते हैं, जरा अंदाज तो देखो न है तलवार हाथों में, हमारा दिल ज़बह कर खून से मेहंदी रचाते हैं, हमें मंजूर है गर गैर से भी प्यार हो जाए, कम अज कम सीख जाएंगे कि दिल कैसे लगाते हैं, सुना है आज वो हमसे खफा हैं, बेरुखी भी है, नजर से नजर हर बार क्यों हमसे मिलाते हैं।

कुछ यूं लगता है तेरे साथ ही गुजारा वो भी, हमने जो वक्त तेरे साथ गुजारा ही नहीं। जब ये अशआर पढ़ते हैं तो इन्हीं के साथ गालिब का अंदाज भी याद आ जाता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। कहने को बात एक सी होती है, अंदाज बदल जाते हैं। मुझे लगता है जिंदगी हर किसी को दिल की मोहब्बत से नवाजती है, आपको भी नवाजा होगा। मोहब्बत ख्यालों को खूबसूरत बनाती है, आपको है कि नहीं? वो नजर देती है जिससे वादियां खूबसूरत लगने लगती हैं। हर वो बात जो दिलबर से जुड़ी हो वो दिलकश लगने लगती है। निलय के साथ हैं आप कारवाएं गजल की शमाए रोशनी से, दिल आबाद रखिएगा और सुनते रहेगा कारवाएं गजल। अजब हाल अपना होता जो विसाले यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता। न मजा है दुश्मनी में न लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता कोई यार यार होता। ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती। न तुम्हें करार होता न हमें करार होता, तेरे वादे पे सितमगर अभी और सब्र करते, अगर अपनी जिंदगी का हमें एतबार होता।

नमस्कार आदाब, एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। मैं हूँ आपका रेडियो हम सफर, निलय है मेरा नाम। दिल की बात को जाहिर करना चाहिए कि नहीं, इस बात को लेकर लोगों में बड़ी कश्मकश होती है। दिल की बात कही नहीं जाती एक अजीब से डर की वजह से कि कहीं दिल की मोहब्बत को कोई ठुकरा ना दे, ना कह दे। पर हुजूर, इतना आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखना, है ना। दूर भले वो हो जाए लेकिन दिल से उसे निकाल पाना आई थिंक नामुमकिन ही होता है। इसी ख्याल के साथ निदा फाजली साहब की बात एकदम सही लगती है कि तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए। अपना सोचा हुआ नहीं होता, वरना होने को क्या नहीं होता। उसकी आदत फकीर जैसी है, कुछ भी कह लो खफा नहीं होता। न मसलते यूं संग दिल इसको, दिल अगर फूल सा नहीं होता। याद आते न शबनमी लम्हे, जख्म कोई हरा नहीं होता। ख्वाब में होती है फकत मंजिल, पर कोई रास्ता नहीं होता। इश्क बस एक बार होता है, फिर कभी हौसला नहीं होता। हद से गुजरे हजार बार भले, हद से गुजरे हजार बार भले, दर्द फिर भी दवा नहीं होता। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर गजलों का कारवां, कारवां गजल। इस कारवां को आगे बढ़ाते इन नगमों और गजलों के साथ।

अजब दिन थे कि इन आंखों में कोई ख्वाब रहता था, कभी हासिल हमें खसखाना और बर्फाब रहता था। उभरना डूबना अब कश्तियों का हम कहां देखें, वो दरिया क्या हुआ जिसमें सदा गिरदाब रहता था। वो सूरज सो गया है बर्फजारों में कहीं जाकर, धड़कता रात दिन जिससे दिले बेताब रहता था। निले के साथ हैं आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, आज भी उसी का कहलाता हूं मैं। जब कोई किसी से दिल से मोहब्बत करता है ना, तो जैसे दो रूह एक हो जाती हैं। रस्म उल्फत निभाना इतना भी आसान नहीं होता, जमाने की बनाई दीवारों को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। जनाब मोहब्बत का एक और नाम है दीवानगी, जो इस कदर सर चढ़कर बोलती है कि उन्हीं लम्हों को ताजा किया करता है दिल जो साथ गुजारे थे। आज भी वही पहचान सही लगती है जो उसके नाम के साथ जुड़ी हो। हमारी पहचान है मोहब्बत, जो दिल से दिल को जोड़कर रखती है। जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, हमारी सब किताबों में एक ऐसा बाब रहता था। सुहाने मौसमों में उसकी तुगयानी कयामत थी, सुहाने मौसमों में उसकी तुगयानी कयामत थी, जो दरिया गर्मियों की धूप में पायाब रहता था। मुफलिसी में ख्याल अब हमसे कोई वादा वफा नहीं होता।

मोहब्बत और दोस्ती कहीं ना कहीं एक ही राह की ओर चलने वाले दो मुसाफिरों की तरह होते हैं। वो मुसाफिर जो साथ होते हुए भी कई बार नजरें चुरा लेते हैं। दोस्त अगर बरसों बाद मिले तो नजरें मिलाकर दिल का हाल बयां कर देते हैं, वहीं मोहब्बत अगर बरसों बाद मिले तो नजरें चुरा कर उसके खो जाने का एहसास करा देती है। इसीलिए हुजूर निले आपसे कह रहा है कि दोस्त हो या मोहब्बत, दिल में संभाल कर रखिए, नजरें चुरा कर नहीं नजरें मिलाकर मिलिएगा। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरी तो नहीं कि शायरी वो ही करे जो इश्क में हो, जिंदगी भी कुछ जख्म बेमिसाल दिया करती है। सदर एक आरमाए गजल रेडियो सफर निलय के साथ, दिल पर हाथ रखिए और अपनी मुस्कान को बरकरार रखिए। पेश खिदमत है अगली गजल आपके लिए। अजब एक शोर सा बरपा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ अब से पहले भी हो चुका है कहीं, जो यहां से कहीं न जाता था वो यहां से चला गया है कहीं, तुझको क्या हो गया कि चीजों को कहीं रखता है ढूंढता है कहीं।

यह हकीकत है कि वक्त सब कुछ बदल देता है। एक उम्मीद रहती है कि अनजाने में ही वक्त कई बार सब कुछ बेहतर कर देगा। वक्त जाते हुए किसी को दिखता नहीं। बीता वक्त कितनी सारी यादें समेटे हुए होता है, जिंदगी के लम्हे समाये हुए होता है, और हम इसी उम्मीद में वक्त गुजारते हैं कि वक्त के सहारे हम इस दर्द को सह ही जाएंगे। हवाएं बहती हैं और ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे छुआ है, और फिर वो छुपाया हुआ दर्द आंखों की नमी में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। सामने का नजारा कब धुंधला हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये तीर दिल में मगर बेसबब नहीं उतरा, कोई तो हर्फ लबे चरागार से निकला था। मैं रात टूट के रोया तो चैन से सोया, कि दिल का दर्द मेरे चश्मे तर से निकला था। वो कैसे अब जिसे मजनू पुकारते हैं फराज, मेरी तरह कोई दीवाना घर से निकला था। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। रेडियो ब्रिस्वानी पर सुनते रहिए।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर।
2: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन, और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. Yeah.

वेलकम बैक ख्वातीनो हजरात, एक ख्याल आपसे बांटना चाहूंगा कि दुनिया की इस भीड़ में अपनी पहचान बहुत जरूरी है भाई। छोटी ही हो अपनी पहचान, लेकिन वो होती अपनी ही है। किसी के साए में उम्र गुजार देना आसान जरूर होता है, हर शख्स को कोशिश करना चाहिए कि दुनिया की भीड़ में उसका भी अपना एक नाम हो। कुछ लोगों के ही सही, पर दिलों पर उसका भी नाम हो। और जब कोशिशों के बाद अपनी पहचान बन जाती है, तब वो खुशी, वो एहसास, वो जज्बा, वो सब कुछ मिल जाता है जिसे बयां कर पाना भी मुश्किल होता है। पर जनाब संभल कर, क्योंकि हम कई बार नाम को बड़ा करने के लिए जब सहारे की तलाश करते हैं ना, तब इस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा, क्योंकि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया से समंदर मिले दरिया नहीं रहता। सुनते रहिए रेडियो बिस्वानी पर कारवाई गजल निले के साथ। आपके इस शहर में गुजारा नहीं, अजनबी को कहीं पर सहारा नहीं। बह गया मैं अगर तो बुरा क्या हुआ, खींच लेती किसे तेज धारा नहीं। आरजू में जन्म भर खड़ा मैं रहा, आपने ही कभी तो पुकारा नहीं। हाथ मैंने बढ़ाया किया बारहा, आपको साथ मेरा गवारा नहीं। कभी

0: हमारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि आप जो भी काम कर लीजिए उनको आप खुश नहीं कर सकते। नुक्स निकालते हैं वो, और नुक्स निकालना उनकी आदत में शुमार होता है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर होता है भाई। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप जान से भी अजीज समझते हैं, पर वक्त बदलते ही वो भी ऐसे बदल जाते हैं मानो कभी हाथ में हाथ था ही नहीं। ऐसे मिलते हैं जैसे कभी हम सफर थे ही नहीं, कभी हम भी इस कदर करीब थे, दिलो जान से बढ़कर अजीज थे, मगर आज ऐसे मिला है वो कभी पहले जैसे मिला ना हो। सारी उम्मीदें, वादे, वफा जैसे सिर्फ नाम के थे। कभी तो चौंक के देखे वो हमारी तरफ, किसी की आंख में हमें भी इंतजार तो दिखे। तभी एक और दिल ये भी कहता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अजीब बात है, खुद से नजर चुराता है मगर वो दूसरों को आईना दिखाता है। जो कल तलक मेरी उंगली पकड़ के चलता था वो शख्स आज मुझे रास्ता दिखाता है। उसे खबर है कि बन जाएगी मेरी जां पर, मगर वो फिर भी मेरा जर्फ आजमाता है। बहुत गुरूर न कर अपनी खुशनसीबी पर, बहुत गुरूर न कर अपनी खुशनसीबी पर, नसीब आज हंसाता है कल रुलाता।

जरा सी बात का मलाल करते हो, शिकायतें भी वही हैं जहां मोहब्बत है। कितनी सही बात है ना ये। बाकी जहां मोहब्बत होती है वहीं उम्मीद भी होती है, और इसीलिए शिकायतें भी होंगी ही। लेकिन हुजूर, ज्यादा उम्मीदी भी बड़ी गलत है, क्योंकि इससे रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। जितनी आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतने ही नुकसान में रहेंगे। कई बार बात को रखने के लिए यूं ही हाँ कह देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। लेकिन सोचिए, क्या ये सही है? बनावटी रिश्तों को बनाए रखना ना उम्मीदी को बुलावा देने जैसा है। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आपका और मेरा रिश्ता ना झूठे वादे पर टिका है और ना किसी उम्मीद पर। आपका और मेरा दिल से दिल का नाता यूं ही नहीं बना है। इसी एतमाद और यकीन के साथ अगली गजल आपके लिए पेश कर रहा हूं, सुनिए। अदाए हैरते आईना गर भी रखते हैं, हमें न छेड़ के अब तक नजर भी रखते हैं। न गिर्दो पेश से इस दर्जा बेनियाज गुजर, जो बेखबर से हैं सबकी खबर भी रखते हैं। कफस को खोल मगर इतना सोच ले सयाद, बहुत असीर तेरे बालों पर भी रखते हैं। फरिश्ता है तो तकद्दस तुझे मुबारक हो, हम आदमी हैं तो ऐबो हुनर भी रखते हैं।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कारवाई गजल निलय के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उन हर्फों का जरिया बनाकर शायर कितने ही सारे ख्याल हमारे दिलो दिमाग में उतार देता है। शब्द कहिए या कई बार रंग कहिए, सब जैसे बोलते हैं हमसे, कुछ ना कुछ कहना चाहते हो। बस उनकी भाषा समझनी जरूरी है, उनके अंदाज को अपनाना जरूरी है। लेकर चले थे कारवां कुछ जज्बातों का, लेकर चले थे कारवां कुछ जज्बातों का, बस कुछ देर और ठहर कर उठ जाना है। मैं निलय हूं, थोड़ी देर और आपके साथ। आप सुन रहे रेडियो ब्रिस्वानी पर कारवाई गजल, सुनते रहिए। अपनी आंखों को अकीदत से लगा के रख ली, तेरी दहलीज की मिट्टी थी उठा के रख ली, तुझको तकते ही रहे रात बहुत देर तलक, चांद की ताक में तस्वीर सजा के रख ली, दिल सी नौखेज कली तेरी मोहब्बत के लिए, सींच के जज्बों से पहलू में खिला के रख ली, इस नए साल के स्वागत के लिए पहले से हमने पोशाक उदासी की सिला के रख ली, दम उलझता था शबे तीरा का तारीखी से, इसलिए चांद की कंदील जला के रख ली।

जब दो लोग प्यार में एक साथ रहते हैं तो आदत पड़ जाती है एक दूसरे की। वक्त आने पर ना आदत छूटती है और न प्यार। वेलकम बैक, मैं हूं नीलम आपके साथ और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। प्यार भी तो आदत की तरह होता है, कुछ रिश्ते भी तो आदत बन जाते हैं, ऐसी आदत जिनको बदल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। न कोई छोड़ रहा है न कोई खींचता है, मैं अपने आप बहे जाता हूं नदी की तरह। न डूबता हूं न रुकता हूं न सूखता हूं, उस एक शख्स को तलाशते हुए, उस आदत को संभाले हुए एक उम्र सी गुजर जाती है। रेत पर उसके पैरों की मोहरों को तकते हुए एक उम्र सी गुजर जाती है। चलिए सुनते रहिए कारवाई गजल। इस महफिल को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त बस हो ही चला है, आप तो बस बने रहेगा हमारे साथ। अजब मौसम है, मेरे हर कदम पे फूल रखता है मोहब्बत में।

मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। हर आंसू में कोई तस्वीर अक्सर झिलमिलाती है, हर आंसू में कोई तस्वीर अक्सर झिलमिलाती है। तुम्हें आंखें बताएंगी दिलों में कौन जलता है। मोहब्बत गम की बारिश है, जमीन सरसब्ज होती है। मोहब्बत गम की बारिश है, जमीन सरसब्ज होती है। बहुत से फूल खिलते हैं जहां बादल बरसते।

वो कहते हैं ना कि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त की बात माननी पड़ती है भाई। और ये दस्तूर है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है, लेकिन इस जुदाई में भी साथ रहेगी आपकी यादों की खुशबू। जो वक्त आपने मेरे साथ गुजारा, मैंने जो आपके साथ गुजारा है, उसे याद करते करते हम अगले हफ्ते फिर मिलने आ जाएंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद कर लिया कीजिएगा, और हाँ, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखिएगा। सुनते रहिएगा रेडियो बृजवाणी। इन्हीं बातों के साथ गजलों का एक कारवां अपनी मंजिल तक आ पहुंचा, तो आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले संडे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। जाते जाते कुछ कह देता हूँ आपके लिए, अपनी जुल्फों को सितारों के हवाले कर दो, शहरे गुल बादा गुसारों के हवाले कर दो, तलखिए होश हो या मस्तीए इदरा के जुनू, तलखिए होश हो या मस्तीए इदरा के जुनू, आज हर चीज बहारों के हवाले कर दो, मुझको यारो न करो रहनुमाओं के सुपुर्द, मुझको तुम रह गुजारों के हवाले कर दो, जागने वाले का तूफान से कर दो रिश्ता, जागने वालों का तूफान से कर दो रिश्ता, सोने वालों को किनारों के हवाले कर दो। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, नमस्कार, टेक केयर।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

By Queensland Fiji Football Association. Due to the rainy weather, QBOG का Sunday 31st May game postpone हो गया है. अब games होंगे Thursday 4th June से Sunday 7th June तक और finals Sunday 14th June को होगा at Acacia Ridge Soccer Club, 174 Mortimer Road, Acacia Ridge 4110. Ground पे चलेगा full soccer का टशन, opens, masters and legends. हर match में energy, excitement और crowd का शोर. और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है. फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक. तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबीओजी सॉकर टूर्नामेंट 2026 में. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में. QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा.

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तों कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उत्ते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असीं बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विशे विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu aaj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: लेकिन साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

अमूल्य है। इस जीवन में हमें जो कुछ मिला है वो सब अमूल्य है, और वो सब हमें प्राप्त हुआ है उस ऊपर वाले की कृपा और उसकी रहमत से। उसी रहमत को धन्यवाद देने के लिए, उसका शुक्रिया कहने के लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देने के लिए अपने जीवन आधार के सफर में आज हम और आप फिर से एक साथ आ गए हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आज एक बार फिर से। और जीवन एक ऐसा भंवर है जिसे पार करने के लिए एक बेस की, एक आधार की बहुत जरूरत है, और वो हमें मिलता है तब जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने ईश्वर को प्राप्त करना शुरू करते हैं और उसकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम मनुष्यता को प्राप्त करते हैं। आइए आज ऐसे ही एक सफर पे फिर से अपने जीवन के आधार को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 एम पर सताक्षी के साथ, और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए मेरे साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 पर और आपके साथ इस सफर में सताक्षी है। धैर्य यानी कि पेशेंस सीखा कई बार है लेकिन समझ हम और आप नहीं पाते हैं, लेकिन धैर्य जो इंसान रखता है, जो इंसान पेशेंस रखता है, वही इंसान जीवन में तरक्की कर पाता है, वही इंसान जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाता है, पा पाता है जो वो पा सकता है, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप भी अपने मन मुताबिक चीजें पाना चाहते हैं तो धैर्य रखिए। आज बेशक आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत आप रखेंगे, यानी कर्म अपने अच्छे रखेंगे और पेशेंस रखेंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चित तौर से आज ना सही लेकिन आप जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो असल में आप डिजर्व करते हैं और आप पाना चाहते हैं। आइए इसी बात पर एक और गीत को यहाँ पर सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सुबह के कुछ अमूल्य विचार जीवन आधार में इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। और इन विचारों में आपके साथ सताक्षी भी अपने कुछ विचार घोल रही है और इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

डर जाते हैं जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अक्सर हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि अब कैसे ही हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे या हम कैसे कुछ भी जिंदगी में कर पाएंगे। तो देखिए, जिंदगी में घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। याद है ना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हो गए थे और अपनी पूरी सेना को भी कौरवों को दे दिया था, उसके बाद भी जीत पांडवों की हुई। इसलिए जब आपके साथ वो ऊपर वाला खड़ा है तो फिर डर भय किस बात का है। आप जीवन में सही कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन के आधार को, यानी कुछ ऐसी बातों को जो आपकी सुबह को भी खास बना रही हैं और सुबह में ऐसा रस घोल रही हैं जो मिठास का रस है, प्रभु भक्ति का रस है, ईश्वर की प्राप्ति का रस है और उस ऊपर वाले पर विश्वास का रस है। इसी रस के साथ, इसी भक्ति रस के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

अक्सर लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि उनकी हर बात पर आप रिएक्ट करें, श्रोताओं हर बात पर आप बोलें। अक्सर लोग आपको उकसाते भी बहुत हैं, बहुत परेशान करते हैं कि आप बोलें कोई बात हो और फिर लोगों के आगे तमाशा बने। लेकिन ऐसी जगह पर मौन धारण कर लेना, मौन हो जाना, शांत हो जाना, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। लोगों के तीखे शब्द, तीखे बाण आपको लगते जरूर हैं, लेकिन बस इतनी बात समझने की जरूरत है कि वो आपको इसलिए उकसा रहे हैं ताकि आप पलट कर वार करें, आप अपने शब्दों का वार करें और फिर वो मौन हो जाएं और आप चिल्लाते रहें और वो उसका मजा लें। इसलिए ईश्वर पर कहते हैं ना, कभी कभी चीजें छोड़ देनी चाहिए, और मौन धारण करना ऐसे लोगों के लिए खासकर सबसे बड़ा सबक होता है। आइए इसी सबक के नाम ये अगला गीत सुनते हैं, और सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

कटाक्षी के साथ जीवन को समझने की एक कोशिश आज एक नई सुबह हम और आप मिलकर कर रहे हैं फिर से जीवन आधार के खास सफर में। इसी सफर में आगे बढ़ेंगे अभी एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए कटाक्षी के साथ।

चुंबक लोहे प्रीति है लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। रेडियो प्रसानी 1701 एम पर जीवन आधार के सफर में श्रोतागण आप हैं सताक्षी के साथ। चुंबक को देखा है ना, मैग्नेट आयरन से उसकी अजब सी मोहब्बत है, ऐसे चिपकता है उससे कि लोहे को भी उठा लेता है। इसी तरह से हमारे शब्द भी हैं। कितना ही कठोर इंसान हो, कितना ही पत्थर दिल इंसान हो, अगर आप उससे मिठास से बोलते हैं, अगर आप उससे प्यार से बोलते हैं, तो आप उसे अपना मीत बना लेते हैं। हमारे शब्दों में वो ताकत है ना कि हम किसी को जान से मार भी सकते हैं और किसी को काल के ग्रास से छुड़ा भी सकते हैं, किसी को मरने से बचा भी सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, ताकि लोग ऐसे जुड़ जाएं जैसे लोहा मैग्नेट से जुड़ जाता है, चुंबक से जुड़ जाता है। आइए इसी बात पर, कबीरदास जी की इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन के आधार का हमारा और आपका साथ जीवन आधार, जिसमें आप सताक्षी के साथ थे। एक ऐसे ही सफर पर कल फिर से आपके साथ चलूंगी, आपके साथ कुछ अनुभव अपने साझा करूंगी और कुछ मॉर्निंग थॉट्स ऐसे आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे और ईश्वरीय शक्ति के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सफर से अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते अदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम आप सभी का रेडियो ब्रिस्बानी में। दोस्तों, नई सुबह, नई उम्मीदें और नए सपनों के साथ आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी चैन रेडियो ब्रिस्बानी पर, और लेकर हाजिर हो चुकी हूँ आप सभी के बीच चांदनी का सफर। अब कुछ समय तक आप और मैं इस सफर को बनाएंगे और भी मजेदार। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने निकले हैं, या फिर कॉफी के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं, बस आपका और मेरा ये सफर बेहतरीन गुजरने वाला है, क्योंकि मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत सारा पिटारा। उस पिटारा को सुनने के लिए इस सफर में बने रहे ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन। आइए फिर शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

हाँ जी, हर मंडे ना एक नया चांस लेकर आता है दोस्तों। अरे वीकेंड ही खत्म हुआ है तो क्या हो गया, लेकिन नए हफ्ते की कहानी अभी शुरू हुई है। जी हाँ, और उस कहानी में हमने क्या लिखना है ये हम पे डिपेंड करता है। सो वेलकम बैक आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेन में। तो दोस्तों, ब्रिस्बेन में ना जून का ये जो प्यारा प्यारा मौसम है काफी प्लेजेंट चल रहा है। दिन का जो टेम्परेचर है लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की ही उम्मीद है, जो कि मॉर्निंग ड्राइव्स और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट माना जा रहा है। है ना अच्छी वाली बात। तो आइए इसी के साथ परफेक्ट गीत सुनते हैं। रेडियो ब्रिस्बेन में सुनते रहिए और बने रहिए आपकी अपनी दोस्त चांदनी जैन के साथ।

सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्मानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर डिस्कशन चल रही है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इकोनॉमी की ग्रोथ पेस जो है वो थोड़ी सी स्लो हुई है, जिस पर एक्सपर्ट्स नजर बनाए हुए हैं। जी हाँ, अपनी नजरों को हम भी टिका कर रखेंगे, लेकिन इस गीत के साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्मानी।

हाँ जी, क्या आप जानते हैं अगर आप अपनी कार में अपना फेवरेट गाना सुनते हैं ना, तो स्ट्रेस लेवल जो है कम हो जाता है। जी हाँ, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज्यादा पॉजिटिव लगता है। इसीलिए अगर आप अभी ऑफिस के लिए निकले हैं तो अपने इस वक्त में अपना फेवरेट गाना जरूर सुनिएगा और साथ में गुनगुनाना मत भूलिएगा, क्योंकि गाते गाते और सुनते सुनते हमारा माइंड तो पॉजिटिव होता है और साथ में सफर भी पॉजिटिव लगता है। एक बार करके जरूर देखिएगा। आइए फिर इसी के साथ सुनते हैं ये ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्मानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवाणी। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं मंडे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, अलार्म बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं। ऑफिस? अरे बिल्कुल नहीं। मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि संडे इतनी जल्दी खत्म आखिर क्यों हो जाता है? हाँ जी, वैसे ना होता है, संडे ना कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं लगता। जितना इंतजार वीकेंड का होता है ना, उतना ही डर मंडे आने का होता है। लेकिन दोस्तों, हम तो हम हैं, हम किसी से डरते नहीं है। मंडे को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ हम अपने इस समय को भी बिताएंगे। ऑफिस आवर्स में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जब हम वर्क करेंगे ना, तो आपका मंडे भी फेवरेट होने वाला है। एक बार करके देखिएगा। आइए फिलहाल इस संडे की तरह ये गाना भी ना भाग जाए, मैं आप सभी के लिए सुनाती हूँ ये गीत। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवाणी।

दोस्तों क्या आप जानते हैं मैं आप सभी को इतने प्यारे प्यारे गीत क्यों सुनाती हूँ? क्योंकि दोस्तों म्यूजिक सुनते वक्त हमारा ब्रेन जो है डोपामिन रिलीज करता है, जो कि एक हैप्पी केमिकल के नाम से जाना जाता है। इसीलिए दोस्तों फेवरेट गाना सुनते ही मूड जो है हमारा अचानक से अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो एक्टिवेट हो जाता है। आप लोगों ने पहले सुना होगा, जब हम छोटे थे और जब हमारे एग्जाम्स होते थे, तब हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। सुबह का लर्न किया हुआ बहुत जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हम कभी नहीं भूलते हैं। वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो मॉर्निंग टाइम पे, मॉर्निंग आवर्स में बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है, यानी कि वो हैप्पी केमिकल्स छोड़ता है और हमारा दिमाग जो है एकदम फ्रेश होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह के टाइम पे हम लोग कुछ काम करते हैं तो वो हमारे मूड को फ्रेश रखता है और साथ ही साथ हमारे दिमाग को भी तेज करता है, और जो भी चीज हम लोग अपने अंदर एक्टिवेट करना चाहते हैं वो चीज हो जाती है। इसीलिए मॉर्निंग में एक्सरसाइज होती है, योगा होता है, अगर हम पढ़ना चाहे, कुछ भी काम करना चाहे, तो हमें मॉर्निंग के टाइम में जरूर करना चाहिए। तो आइए इसी के साथ मैं आपको सुनाती हूँ ये नेक्स्ट ट्रैक।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा, हर कोई जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर कोई हल नहीं होता, तो हर कोई बोलता है प्लीज बी पॉजिटिव। कहीं पर भी हम कुछ पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और मैं भी आप सभी से कहती हूँ कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। आपको पता है इस बी पॉजिटिव में कितनी ज्यादा एनर्जी और कितना पावरफुल है ये? दोस्तों, KFC के जो फाउंडर है कॉलोनल सैंडर्स, उन्होंने जो अपना बिजनेस है वो 65 साल की उम्र में शुरू किया था। आप सोच सकते हैं 65 ईयर्स, यानी कि इस टाइम तो सब रिटायर्ड हो जाते हैं, और इवन हम लोग तो जब छोटे होते हैं ना, और कुछ हम लोग किसी भी चीज में फेल हो जाते हैं तो हम लोग हमेशा नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने 65 ईयर्स में भी अपने बिजनेस को खड़ा किया। इसीलिए दोस्तों, अगर कभी भी लगे ना कि अब हमें देर होगी, अब हम नहीं कर सकते, तो याद रखिए सपनों की दोस्तों कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जी हाँ, हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए। अगर वो जज्बा जो पॉजिटिव है ना, तो वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर बूस्ट एक लेकर आती है, और हम ना बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, ताकि हमारे दिमाग में कुछ भी चीज आए वो पॉजिटिविटी के साथ ही आए, क्योंकि हर एक चीज को हम हल कर सकते हैं जब हम पॉजिटिव सोचते हैं। तो जो नामुमकिन भी होता है ना चीज, उसको भी हम मुमकिन कर सकते हैं सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आइए इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, और साथ में दोस्तों आज बिना वजह ही एक प्यारी सी स्माइल दीजिए, और स्माइल के साथ साथ गुनगुनाए इन गीतों को। और अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। हमेशा खुश रहिए और हमेशा सेफ ड्राइव करें। टेक केयर।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिज

ईरान के साथ शांति समझौते के लिए प्रसारत अमेरिकी वार्ताकारों पर जासूसी कर रही है। इस घटना ने अमेरिका खुफिया अधिकारियों में इसराइल की जासूसी गतिविधियों को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हालिया अमेरिकी खुफिया आकलनों में इस बात पर चिंता जताई गई है कि जब तेहरान के साथ बातचीत रुकी हुई है तब इसराइल ने वॉशिंगटन की बातचीत की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। मणिपुर हिंसा के तहत राहत शिविरों में अब तक 731 विस्थापितों की मौत, 43,000 लोग अभी भी बेघर। मणिपुर में मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद से अब तक राहत शिविरों और पहले से निर्मित आवासों में शरण लिए हुए 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के गृह विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शेयर की गई रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। ये जानकारी मणिपुर सूचना आयोग के निर्देश के बाद आरटीआई कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक को सौंपी गई। एक दर्जन प्रहरियों के घेरे में त्विशा शर्मा की सास गिरिबाला और पति लगाए गए अतिरिक्त कैमरे। मॉडल एवं अभिनेत्री त्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में सेवानिवृत्त जिला जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह 2 जून से भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद हैं। न्यायालय के आदेश के बाद उनकी सुरक्षा के लिए जेल प्रशासन सतर्क है। वहां 12 प्रहरियों को इन मां बेटे की सुरक्षा में लगाया गया है। वहीं पूर्व में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था होने के बावजूद दोनों की बैरकों के आसपास अतिरिक्त सीसीटीवी लगाए गए हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हाँ जी, सुबह सुबह खुशियों का मेला हो, मुबारक हो आपको ये प्यारा सा सवेरा। और आज मैं शशि जोखन आपके साथ जुट गई हूँ एंड इस सुबह के सफर में आपके साथ मैं 2 घंटों तक रहूंगी, क्योंकि आज जतीश जी और अमिता जी दोनों ही आपके साथ नहीं है। ठीक है, सो आज मैं रहूंगी आपके साथ एंड उम्मीद है कि आज सोमवार की सुबह आप खुशी खुशी काम की ओर बढ़ रहे हो और बच्चे भी स्कूल की ओर की तैयारी कर रहे हैं, सभी कुछ ठीक ठाक है। सो खुशियों भरा ये सुबह आपके साथ मैं होली हूँ शशि जोखन।

खैर चलो इसे हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, लगता है कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है, मगर थोड़ी ही देर में इसे हम सुधार कर लाने की कोशिश करेंगे। मगर देखिए बस आपकी यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपका दिन सबसे खूबसूरत हो, एंड इसी तरह आप हंसते खेलते होले होले अपने सफ़र पर चल चल पड़ेंगे, ठीक है? तो आज ऑफ कोर्स आप जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, आपका स्वागत कर रही हूँ, एंड आपसे कह रही हूँ कि नमस्कार, कैम छो, सास्त्रीय काल और अस्सलाम वालेकुम।

जी हर सुबह, जी न हर सुबह एक नई दिन होती है और ये दिन हमारे जीवन की नई दिन होती है, ठीक है। सो बहुत ही खुशी खुशी के साथ शुरुआत कीजिए इस दिन का, एंड बी हैप्पी, दैट विल मेक यू डे।

हाँ जी, आप अमिताभ बच्चन को इस गीत में झूमते हुए देखे होंगे जरूर। तो ये थे बहुत ही बढ़िया कुछ समय की ये गीत, एंड शंकर माधवन और शंकर एहसान लोए एक साथ इस गीत में इस गीत को अपने आवाज दिए थे। सो एनीवे, चलते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सा नगमा आपके लिए है। सो होपफुली आप इस गीत को पसंद करेंगे।

हाँ जी, आज तो बहुत ही सुहाना मौसम है एंड सुबह के सफर में मौसम सुहाना होता है तो प्रोग्राम भी बहुत ही बढ़िया जाती है। आज अभी 14 डिग्रीज है और शायद 3 बजे शाम तक लगभग 22 डिग्रीज हो जाएगी ना, 22 डिग्रीज। तो बच्चे उस समय भी स्कूल से बस घर आएंगे, तो ख्याल रखिए उनका, कैसे वो बहुत ज़्यादा बाहर ना घूमे। बट फिर भी इट्स बेटर देन समर की वेदर, है ना? सो लेट्स होप कि बच्चे एंजॉय करें आपके साथ घर आकर समय एंजॉय करें। सो एनीवे चलो चलते हैं, एक और गीत आपके लिए पेश करते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये गीत, अलका याग्निक, विनोद राठौड़, मोहम्मद अजीज, तीनों मिलकर इस गीत को बहुत ही खुशनुमा गीत बनाए हैं।

हाँ जी, आज हम आपके लिए डिफरेंट मूड्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और जबकि आज अमिता जी और जितेश जी साथ नहीं है, तो मैं शशि जोखन आपका साथ दे रही हूँ. बस यही कहना चाहती हूँ कि उगता हुआ सूरज दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको. हम तो कुछ देने के काबिल है नहीं, देने वाला हजार खुशियाँ दे आपको. सो एन्जॉय योर डे.

हाँ जी, फिल्म केदारनाथ का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। और इस फिल्म में सुशांत सिंह दिखे थे और उनके साथ सारा अली खान। तो देखिए, कहते हैं ना कि ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, किसी ने कहा है। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किल तो साज है जिंदगी का, मुश्किल तो साज है जिंदगी का, आने दो आने दो, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के मैं चलता हूँ। तो इसी पर चलो ये

हाँ जी, संजय दत्त पर बनाई गई ये फिल्म संजू, इसमें जो मुख्य किरदार रणबीर कपूर ने अपने जो किरदार है को बहुत ही बढ़िया ढंग से निभाया, और ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि जैसे संजय दत्त ही बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने उनको इमिटेट किया और उनकी इस उन पर बनी इस फिल्म को एक बहुत ही अच्छा अंजाम दिया। तो इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। देखिए, जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। आप हार मान लेंगे तो फिर पीछे छूट जाएंगे। सो जो भी हो, पॉजिटिव सेंस में आप आगे बढ़िए एंड अपने जीवन को भी आगे बढ़ाइए। और अब हम चलते हैं आपको लेकर एक ऐसे गीत है, वैसे तो आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी का ये कार्यक्रम सुबह का सफर, और जैसे मैंने पहले कहा कि आज जतीश जी और अमिता जी साथ नहीं है तो मैं आपका साथ दे रही हूँ, एंड होपफुली आई विल डू जस्टिस टू देयर प्रोग्राम।

जी, फिल्म सदमा का ये गीत आप सुन रहे थे। एंड श्रीदेवी और कमल हसन पर फिल्म आई गई थी, ये बहुत ही प्यारा सा नगमा। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में पता चला है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स लिंक टू 58% राइज इन डिमेंशिया रिस्क। सो आप देखिए, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो हम बाहर से लेकर खाते रहते हैं ना, तो इससे हमारे जो डिमेंशिया होने का रिस्क बढ़ जाती है, और वो भी 58%। एंड 58% मीन्स 58% बढ़ जाती है। सो ट्राई एंड अवॉइड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड घर पर बनाइए, खाइए, जो भी कम खाएं मगर अच्छे अच्छे भोजन खाएं ना, ये इम्पोर्टेंट है। कभी काल बाहर निकल जाते हैं तो ले लेते हैं, वो दूसरी बात है, और सुपरमार्केट से प्रोसेस्ड फूड हम लेते हैं, ये सब रिस्क होती है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को देखिए

इसको इसके लिए जो शेल्फ लाइफ है इसको बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ये डालते रहते हैं एंड ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. ठीक है, मगर हमको क्या पता, हम इंग्रेडिएंट्स में देखते भी है क्या, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली नो कि इंग्रेडिएंट्स में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, कैसा प्रोडक्ट है वो, हम नहीं जानते. हम टर्न करके देखते भी है कैन में या किसी भी चीज़ में, पर हमको समझ में ज़्यादातर आती ही नहीं है, बस हम उठाकर लेकर चलते हैं यही उम्मीद में कि जो हमारे काउंसिल है, हमारे जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन मेकिंग श्योर हेल्थ रिस्क फूड हमारे देश में ना आए, हमारे लोगों के लिए हार्मफुल ना रहे, उनको भी क्या पता क्या नहीं पता, हु नोज. आजकल तो लोग को जॉब में ले लेते हैं, सीवी भी नहीं देखते हैं, सीवी देखते हैं तो सवाल जवाब नहीं करते हैं ज्यादातर, और उनकी जो रेफरेंसेस है उनको नहीं चेक करते हैं. तो ऐसे ऐसे देखा गया है कि कई लोग डॉक्टर होते नहीं मगर डॉक्टर का काम बेखूबी करते रहते हैं और लोगों को पता ही नहीं ये मेडिसिन किए या नहीं किए. मगर देखिए ये बहुत चालाक लोग हो गए हैं इस दुनिया में. सो चालाक लोगों से बचने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, ऐसे करना चाहिए. एक्चुअली इट्स ऑन आवर गवर्नमेंट, ऑन आवर मिनिस्ट्रीज टू मेक श्योर कि वो ऐसे लोगों को काम पर ना रखें जो हमारे लिए सही ढंग से काम नहीं करते हैं. चलो, ये जवानी है दीवानी का अगला गीत आपके लिए पेश.

0: हाँ जी, इस फिल्म में आप रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को साथ में दिखे होंगे। वैसे तो और भी फिल्में उन्होंने की है साथ, मगर ये फिल्म में आपको तो पता ही है कि ये दोनों अब शादी कर चुके हैं, पेरेंट्स भी बन चुके हैं एंड बहुत ही हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं दीपिका, जबकि रणवीर सिंह के साथ शादी की है एंड रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के साथ। सो दोनों बेहद खुश है अपने अपने ज़िंदगी में एंड बस देखिए, अभी शायद आपको पता होगा कि हाई स्कूल्स में अभी अबाउट 1/3 ऑफ ईयर 12 स्टूडेंट्स साइंस सब्जेक्ट्स को छोड़ चुके हैं सिंस 2025। और वैसे तो इंग्लिश हैज़ बीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरऑल ड्रॉप आउट्स। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो ड्रॉप आउट करते हैं, कैन यू इमेजिन, इंग्लिश सब्जेक्ट ड्रॉप आउट करते हैं तो जीवन में और क्या, सब बहुत सारे देशों में इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होती है ना। और इसके साथ साथ ठीक है इंग्लिश में बोल लेते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सही ढंग से लिखने और बोलने का तरीका सिखाते हैं हमें इंग्लिश सब्जेक्ट जब हम लेते हैं। और द अदर वे साइंस देखते हैं तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर ये सब ड्रॉपआउट्स ज़्यादा होते हैं तो आगे चलकर जो साइंस है सब्जेक्ट्स लेने वाली जो डिग्रीज वगैरह है वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, देश में कमी होगी। और जब कमी होगी तो फिर बाहर से लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा, और जब बाहर से लोगों को एम्प्लॉय की जाएगी तो फिर नए नए देशों से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ बसेंगे, यहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा कि देश का नक्शा बदलने लगेगा, यहाँ की जो पॉपुलेशन की जो रुख है वो अलग दिशा लेगी, तो फिर इसमें फिर आगे बढ़कर आगे चलकर फिर इश्यूज हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी मिनिस्ट्रीज को सरकार की जो है उन्हें ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों की। खैर एनीवे, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और अगला गीत जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक्चुअली कौन से गीत आपको मैं सुनाऊंगी, ओके चलो ये गीत हम सुनते हैं।
1: प्यार दीवाना होता है,
0: चलते हैं सदाबहार फिल्मी गानों की ओर।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
1: हिल मत चल
2: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा या
1: या
2: ओके सॉफ्ट या
1: सॉफ्ट
2: या
1: अप लाउड या
3: चलो अगला गीत जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक्चुअली किशोरदा की आवाज में है और राजेश खन्ना और सिंपल कपाड़िया. सिंपल कपाड़िया जो राजेश खन्ना की बीवी थी, डिंपल कपाड़िया उनकी बहन सिंपल कपाड़िया. सो इन दोनों ने एक रोमांटिक हिंदी फिल्म किए थे साथ में, उसी फिल्म का ये नगमा.
4: कभी कभी इत्तेफाक से
3: 1977 की फिल्म अनुरोध में साथ दिखे थे ये दोनों.

हाँ जी बिल्कुल, हमारे जीवन में कितने लोग रास्ते पर दिखते हैं, मगर देखिए सभी लोग को तो हम पहचानते नहीं है ना, मगर फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिर लगता है कि जाना पहचाना सा लगता है ना। सो ये ईश्वर की कृपा माने या ईश्वर जो भी हमारे रास्ते में लाते हैं वो हमारे साथ जीवन में होती हैं। मगर देखिए बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है, वेदर मौसम बहुत ही सुहाना है, एंड बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि आज का मौसम बड़ा सुहाना, दिल में सिर्फ खुशियों का तराना है। तो अगला गीत हम सुनते हैं और आप सुन रहे हैं सुबह का सफ़र, और मैं शशि जोखन आपका साथ दे रही हूँ। आप भी इसी तरह हमारा साथ देते ही रहिए और हम एक साथ मिलकर ये कार्यक्रम को पूरे ऑफ कोर्स 9 बजे तक आपका साथ मैं दूंगी।

0: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा गीत। ये एक्चुअली 1961 की फिल्म ओपरा हाउस से ली गई, लता जी और मुकेश की आवाजों में। बहुत ही बढ़िया सा नगमा। देखो मौसम क्या बाहर है। देखिए मौसम जब बाहर रहती है ना, सनशाइन यानी धूप में निकलिया कीजिए आप, घटाओं में भीग कर तो देखो कि जिंदगी क्या है, किताबों से हट कर तो देखो। एक्चुअली जिन लोगों को ऐसे मौसम मिलते हैं वो शायद कभी काल कंप्लेन करते रहते हैं कि बहुत धूप निकल रही है, बहुत गर्मी है, मगर जहाँ पर गर्मी होती कम है वहाँ के लोगों से पूछ कर देखिए कि कितने मिस करते हैं वो ऐसे मौसम। और ऐसे मौसम जब होते हैं ना तो हाँ, पता है मुझे कि बहुत देर तक बाहर रहेंगे आप, धूप में निकलोगे तो गर्मी ज़्यादा लगती है, मगर फिर भी जो खुशहाली मिलती है आपको, जो हैप्पीनेस धूप जब धूप निकलती है तो खुशी महसूस, मैं तो खुशी महसूस करती हूँ। सो एनीवे, चलो अब जो अगला गीत है मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है किसी शायर की गजल। याद है आपको ये गीत? इट्स अ टाइमलेस रोमांटिक ट्रैक और ये 1977 की फिल्म ड्रीम गर्ल से ली गई है, और इसमें धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी एक साथ काम किए थे। वैसे तो बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किए हैं साथ में, मगर ये जो सॉन्ग है इसे लेजेंडरी सिंगर किशोर दा ने गाए थे और म्यूजिक कंपोज किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, और लिरिक्स आनंद बख्शी जी द्वारा लिखी गई थी। और ये जो सॉन्ग है ये अभी भी एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रोमांटिक सॉन्ग्स आप कह सकते हो बॉलीवुड की, और बहुत ही सोलफुल मेलोडी और इमोशनल डेप्थ है इस गीत में। सो चलो इसे सुनते हैं। एंड लगभग 10 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, और आप होले होले काम की ओर बढ़ रहे होंगे। चलो ये गीत सुनते हैं किशोर दा की आवाज में।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

हाँ जी, आज धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं है। ऐसे कई सितारे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी यादें अभी भी ताज़ा है। एंड देखिए, हमारे बीच से लोग आते हैं, बीच में लोग आते हैं, चले जाते हैं, मगर ये जीवन की रीत है। लोग आएंगे और लोग जाएंगे, मगर ये जो हमारी जीवन है ना, ये थमती नहीं है, ये आगे बढ़ती ही रहती है। एंड और बढ़ना चाहिए भी, क्योंकि इसी तरह जीवन चलती है आगे। एंड अगर आपकी भी जीवन में कुछ ऐसे समय से आप गुजर रहे हो कि गम की बौछार आपकी जीवन में आई हो, तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप शांत हो, आप जीवन में आगे बढ़ें। एंड यादें तो रहते हैं लोगों की, मगर इतना भी नहीं कि आपकी जो सेहत है, आपकी जो हेल्थ है, उस पर बुरी प्रभाव पड़े। सो आप अपनी देखभाल कीजिए। एंड आपको इस कार्यक्रम में खास तौर से हम शामिल करते हैं। गम की बौछार तो आती ही रहती है, सभी के जीवन में आती है। ऐसे कोई भी बंदा जिंदगी में, जीवन में नहीं है कि उनके और गम की छाया ना छाई हो, या दुख की बौछार ना आई हो। ठीक है, तो चलो एक और गीत सुनते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी 1701 का ये कार्यक्रम। एंड हम लेकर आए हैं फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये नगमा। इस बार मोहम्मद रफी जी, और फिल्माई गई है ऋषि कपूर पर।

हाँ जी, तो आप सुन रहे थे फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये नगमा। और हाँ जी, कुछ लोग आप देखे होंगे कि बेफिजुल की आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, बेफिजुल की आर्ग्यूमेंट्स, छोटी सी बात हो गई आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, उनका बर्ताव चेंज हो जाता है, मूड चेंज स्विंग्स होते हो, मूड स्विंग होते रहते हैं। तो ऐसा क्यों क्यों लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स इंक्रीज कैसे होती हैं? ये इंक्रीज इसलिए होती है बिकॉज हम बहुत ही ज्यादा वी ट्राई टू हार्ड टू प्रूव आवर सेल्फ राइट, इसीलिए आर्ग्यूमेंट ज्यादा होती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, क्या और या क्या करना चाहिए? तो मेन तो ये है, मैं कहूंगी कि आप स्टे काम, काम रहिए और जो बोलो सच ही बोलिए, स्पीक द ट्रूथ और लेट इट रिवील इट सेल्फ। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टे काम, स्पीक ट्रूथ एंड लेट इट रिवील इट सेल्फ। तो आपको प्रूफ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए एंड दैट्स द मेन थिंग। ये आपकी एनर्जी भी सेव करेगी और जो पीस है आपके जीवन में ये भी लाएगी। सो बस टेक केयर, स्टे सेफ, ठीक है? चलो एक और नगमा सुनते हैं, इस बार लता जी और किशोर दा की आवाज में।

0: शशि कपूर और राखी पर फिल्म आई गई। ये नगमा,
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business, built on trust.
0: देखिए, अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बेशक आप संपर्क कीजिए जतीश पूरन जी को, एंड शी विल मेक श्योर कि आप आपकी भी एडवर्टीजमेंट इसी तरह रेडियो ब्रिजवानी पर आते ही रहें। एनीवे, चलो 8:30 बज चुके हैं, एंड अब मैं एक्चुअली मैंने सोचा कि अगर केरला से कोई हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं तो, या फिर ब्रिस्बेन में है, या फिर विदेश में कहीं भी रेडियो ब्रिजवानी का ये कार्यक्रम सुबह का सफर सुन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक गीत लेकर आऊं, केरला बोट सॉन्ग। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल सॉन्ग है केरला के लिए, एंड ज़्यादातर जब ओनम होते हैं ना तो ये गीत वो लोग गाते हैं। सो चलो सुनते हैं, और जितने भी भारत के वासी हैं यहाँ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं, भारत से आकर यहाँ बसे हुए हैं, या खास तौर से केरला से है, तो ये गीत आपके लिए है।

0: हाँ जी, आप कहीं पर भी कार्यक्रम सुन रहे हो, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: हाँ जी, अब चलो हम चलते हैं, आपको सुनाते हैं, आप इसे चाहे गजल कह लीजिए या फिर गीत कह लीजिए, कुमार सानू की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा, वेरी सूदिंग गीत कह लीजिए।

हाँ जी, कुमार सानू की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे। देखिए, हमारे आपने कभी नोटिस की कि आप कहीं पर जाते हो किसी इवेंट में या कहीं पर, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी ओरा बहुत अलग होती है। जब वो एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बदला सा हो गया है। ये क्या होता है, क्यों होता है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रेजेंस पीपल को किस तरह से फील करने के लिए छोड़ देती है? व्हाट इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होता है आपके जो ओरा होती है, क्या कैसा होता है? तो ये बोलते हैं कि अप्लाई 3 E's ना, जैसे कि पहली है एम्पावर, एनरिच एंड एनकरेज। तो ये जो होती है ना, आप एम्पावर जो होती है जिस तरह से, वो आपको लोगों की बातें को अटेंटिवली सुननी चाहिए। बी मोर ट्रस्टिंग होते हैं आप, इसी तरह से आप किसी को एम्पावर कर सकते हैं। लिसन, जो भी सुनना है अटेंटिव होकर सुनिए, ये नहीं कि भाग दौड़ करते रहते हैं और किसी की बातें को सुनते रहते हैं, वो एम्पावरिंग नहीं होती है। एंड आप कैसे अन्य लोगों को वैल्यू करते हैं, कैसे उनको फील कराते हैं, तो ये सभी एम्पावर होती है ना। और एनरिच होती है, शेयर योर टाइम और स्किल्स, आप अपने टाइम को और अपने स्किल्स को कैसे शेयर करते हैं, तो इस तरह से आप किसी और को एनरिच करते हो। और आप किस तरह से उनकी कॉन्वर्सेशन में वैल्यू डालते हो, ये सभी कुछ एनरिच करते हैं किसी एक बंदे को या किसी की सोल को आप एनरिच करते हो। फिर एनकरेज का क्या बात होती है, कैसे आप एनकरेज करते हो? आप किसी को एनकरेज करने के लिए आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, कॉम्प्लीमेंट कीजिए, वोकलाइज कीजिए जो अन्य लोगों में खूबियां हैं, तो ऐसा करने से आप लोगों को एनकरेज करेंगे। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी नाइसली इज बिन रिटन। आप किसी को एम्पावर कीजिए, एनरिच कीजिए, एनकरेज कीजिए, मगर इसका मतलब क्या है हम लोग शायद कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। सो एनीवे, एक और नगमा सुनते हैं। इस बार हमने फिल्म लाल पत्थर से इस गीत को चुना है आपके लिए, किशोर दा की आवाज़ में।

0: Sending a Digicel top-up to loved ones in Fiji is super easy. Keval apne nearest dairy, supermarket or petrol station pahunchiye aur kharidiye 10, 20, 30 ya $50 top-up. Aap website www.digicelinternational.com visit bhi kar sakte hain. Digicel top-up apne family ko Fiji dene ke liye. Paisa bhejne ke liye our partner Click Express Pick is the easiest way to send money to Digicel Fiji. Keval आपको रजिस्टर होना है at www.clickexpresspic.com पर. Digicel, we are better together.
1: हाँ जी, आप सुन रहे हैं सुबह का सफर और ठीक 9 बजे तक मैं आपका साथ दूंगी. और जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि जतीश जी और अमिता जी साथ में नहीं है, मगर मैं शशि जोखन आज आपका साथ दे रही हूँ. उम्मीद करती हूँ एक बार फिर कि मैं खरा उतर रही हूँ. चलो ये गीत सुनते हैं और फिर बाद में आपको बस आपके साथ मेरा बस लगभग कितना मिनट, 15 मिनट ही रहेंगे. फिल्म कलंक से ली गई है नगमा, पर्दे पर वरुण धवन और आलिया भट्ट के लिए.

0: हाँ जी, उम्मीद है कि आप भी फर्स्ट क्लास ही हो और काम की ओर बढ़ रहे हो ना, तो फर्स्ट क्लास ही होकर जाइए, खुशी खुशी जाइए काम पर, तो आपका दिन भी बढ़िया जाएगा और जो काम आपको सौंपा गया है वो भी आप ढंग से ही करोगे. ठीक है, सो बी हैप्पी.
1: Sending our Digicel top up to loved ones in Fiji is super easy. केवल अपने nearest dairy, supermarket और petrol station पहुँचिए और खरीदिए 10, 20, 30 या $50 top up. आप website www.digicelinternational.com visit भी कर सकते हैं. Digicel top up अपने family को Fiji देने के लिए. पैसा भेजने के लिए our partner Click Express Pick is the easiest way to send money to Digicel Fiji. केवल आप को रजिस्टर होना है at www.clickexpresspic.com पर. Digicel, we are better together.
0: हाँ जी, मेरा देश रंगीला. क्या आपका देश है रंगीला? आप इसमें क्या, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है ताकि आपका देश रंगीला रहे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करे, एंड इन अ पॉजिटिव सेंस. ठीक है.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: अगला नगमा जो है

हाँ जी, सफर खत्म हो जाता है लेकिन जिंदगी यादों में सिमट कर नहीं रहती ना, वो चलती रहती है, आज भी कल भी। कुछ यादें खत्म नहीं होती है। याद रखिए, कल का सवेरा किसने देखा। सो खुश रहिए, औरों को खुश रहने का मौका जरूर दीजिए। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ये जीवन हमने अभी देखी है, कल क्या होगा किसको पता, आगे जीवन में क्या है किसको पता है?

हाँ जी, इसको हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। अगला जत जाते जाते हम ये आखिरी गीत आपके लिए छोड़े जाते हैं, हैप्पी एंडिंग। बहुत खुशी हुई आपके साथ जुड़कर, उम्मीद है कि आप भी खुश हुए होंगे। Till we meet next time, खुश रहिए।

गुड मॉर्निंग अजी, कैसे हैं? बढ़िया, जबरदस्त। हाँ देखिए, हमारी दुआ हमेशा यही होती है कि हर वो सुबह जो हमें आपसे मिलवाती है वो आपकी ज़िंदगी की बेस्ट सुबह हो। हर आने वाला दिन आपकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन हो और आपकी ज़िंदगी पूरे दिन खुशियों से महकती रहे। और ये दुआ अगर कबूल होती है तो यकीन मानिए, धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी ही खुशियों से भर जाएगी। और इसी जिंदगी के सफर पर एक बार फिर से अपना साथ लिए मैं सताक्षी आ गई हूँ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। जी हाँ दोस्तों, ये है साथ मेरा आपके साथ इट हैपेंस में। और इस साथ के साथ आज हम फिर से अपने दिन की, अपनी जर्नी की आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड आई रियली विश कि आप भी इस सफर पर मेरे साथ चलने के लिए बिल्कुल ताज़ातरीन तरीके से तैयार होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं जिंदगी के, हमारी जर्नी के एक और सफर पर। मैं हूँ सताक्षी आपके साथ और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। और ये अगला ट्रैक आपके लिए, इसके उस पार होंगी आपके साथ और भी बेहतरीन बात।

happens, enjoy कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM पर सताक्षी के साथ। It happens में आज हम फिर से कर रहे हैं आपके साथ जिंदगी की कुछ खूबसूरत बातें, लेकिन इन बातों की सही शुरुआत के पहले हम पेश करेंगे उन्हें जिनके लिए आज का दिन है स्पेशल और खास। तो जिनका भी आज है हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हम विश करते हैं कि आपको जिंदगी की हर चॉइस ख्वाहिश मिले और आप जिंदगी का जो भी कदम उठाएं आपको सक्सेस दे, प्रॉस्पेरिटी दे और ढेर सारी लोगों की नज़र में इज्जत दे। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जिंदगी के सफर पे एक दूसरे का हाथ थामे हुए यूं ही चलते रहें और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें बगैर इस बात की परवाह किए कि लोग कैसे हैं, क्या हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, बस आप एक दूसरे का साथ निभा पाएं। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको डेडिकेट करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ। इट हैपेंस।

0: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो पुलिसवानी 1701 एम पर, और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। तो चलिए आज इट हैपेंस में हम बात करते हैं आपके आसपास रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जी हाँ, कुछ लोग हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में ऐसे जरूर होते हैं जो अपने आप को समझते हैं सुपीरियर, और इनको लगता है कि ये जब चाहें हमें नीचे दिखा सकते हैं, ये जब चाहें हमारे इमोशंस को यूज कर सकते हैं, और हम इनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं पर्सनली इमोशनली। हम समझ नहीं पाते कि हम इनको कैसे हैंडल करें। तो ये याद रखिए कि इनसे इफेक्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ खुद को सुपीरियर समझते हैं। ये अपने आसपास जो इनका माहौल है ना, या इनके जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, ये उससे ना तो सेटिस्फाई होते हैं और ना ही खुश होते हैं। इन्होंने अपने ईगो को ही सबसे ऊपर रखा है, फिर चाहे वो रिश्ते हो या इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ये हमेशा अपनी कमियों को दूसरों पर थोपते हैं, और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है ये बहुत पावरफुल है, या ये बंदा जो है ये बहुत कुछ जानता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ऐसा शो करते हैं, बल्कि ये खुद अंदर से बहुत ही खोखले हैं। इसलिए इनको जो आप भाव देते हैं ना बिना मतलब का, सबसे पहले वो भाव देना बंद कर दीजिए, वो इम्पोर्टेंस देना बंद कर दीजिए। आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। इट हैपेंस में स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ आपका अपना ये ब्रेकफास्ट शो।

रेडियो पिस्तानी 1701 AM पर दोस्तों आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस, जिसमें हमेशा की तरह आज भी हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें आपसे कर रहे हैं। आपके इस सफर में, इस खूबसूरत मॉर्निंग सफर में हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। आपको पता है आपको कैसा इंसान डिजर्व करता है? जी हाँ, खुद को कम मत समझिए, हमेशा ये मत सोचिए कि हम किसे डिजर्व करते हैं। भाई आपको भी तो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि एक जो बंदा जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी ही बिताना चाह रहे हैं या जो आपकी दोस्ती के लायक है वो बंदा होना चाहिए ना, आपकी अपनी इम्पॉर्टेंस भी होनी चाहिए। तो आपको एक ऐसा इंसान डिजर्व करता है जिसके पास अगर आप हैं तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके पास क्या है। यानी कि वो हर बात में आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे, उसे ये एहसास हो कि अगर आप उसके पास हैं तो शायद वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। उसको मोटिवेशन जो है वो आपसे मिलेगा, वो जो एक हर जगह उसके लिए स्टैंड लेने वाला इंसान होता है वो उसके पास है, इमोशनली उसे सपोर्ट करने वाला इंसान उसके पास है, तो उसके पास लाइफ में बहुत कुछ है। तो जनाब अगर कोई आपको छोड़ कर गया है तो आपको उस बंदे को बस ये कह के याद करना है कि इस बंदे को मेरी वैल्यू थी ही नहीं, और जिसे आपकी वैल्यू नहीं थी उसके साथ रहना ये तो खुद के साथ ही अन्याय हुआ ना। तो चलिए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते रहिए रेडियो पिस्तानी पर सताक्षी के साथ। जी हाँ, इट हैपेंस।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
10: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
9: अच्छा, वो क्या?
10: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
9: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
10: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
11: पाकिस्तानी 1701 AM पर दोस्तों आपके साथ इट हैपेंस के सफर में सताक्षी है, और अभी वो वक्त है जहां तीन बैक टू बैक ट्रैक्स निभाते हैं हमारा साथ। आज भी तीन बैक टू बैक गानों के साथ सताक्षी आपके साथ है। तो चलिए आज देखते हैं गानों की हैट्रिक में। जी हाँ, गानों की हैट्रिक में आज का पहला ट्रैक कौन सा है?

गानों की हैट्रिक एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। इसके पहले कि हम अपने छापन्स के सफर में आगे जाकर कुछ और बातें आपके साथ करें, गानों की हैट्रिक के इस दूसरे ट्रैक को आइए एंजॉय करते हैं।

वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप और सुन रहे हैं गानों की हैट्रिक मेरे साथ। गानों की हैट्रिक का ही लास्ट ट्रैक स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: झुमका।
1: वेलकम बैक इट हैपेंस के इस बेहतरीन और खास सफर में एक बार फिर से दोस्तों आप हैं सिताक्षी के साथ और मेरे साथ आप सुन रहे हैं ये जो बेहतरीन सफर है हमारा और आपका। और इस बेहतरीन सफर पर आज एक बार फिर से कुछ खास और खूबसूरत बातें। देखिए, बातें तो आपसे वैसे सब करते हैं, मतलब आप जिस भी चैनल को ट्यून इन कर लें या अगर आप कुछ लोगों के साथ भी बैठ जाएं तो वो भी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन बात ये भी है ना कि हमें किसकी बातें अच्छी लगती हैं, हम किसकी बातों से इंस्पायर होते हैं, हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा कौन है जिसके साथ बैठकर हमें ये लगता है कि यार ये बंदा जो है ये हमें समझता है, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में जानना और समझना कि कौन सा ऐसा बंदा है जो हमें समझता है और कौन सा ऐसा बंदा है जिसके साथ अगर हम बात करें तो हमें अच्छा लगेगा। और क्या जो लाइफ लेसन है ये जो हमें बता रहा है, ये समझा रहा है, ये वाकई हमारे बेनिफिट के लिए है या नहीं, है ना। तो जिंदगी में जब भी किसी के साथ बात करें या किसी की बातें सुनें तो ये सबसे पहले ज़रूर देखें कि वो आपसे दूसरों को लेकर गॉसिप कर रहा है या फिर कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर कर रहा है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ आगे बढ़े। हाँ, सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस और बने रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

नेचर मिस्वानी पर दोस्तों आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। और इस इट हैपेंस के खूबसूरत सफर में हमारी और आपकी जो जर्नी है प्यार भरी खूबसूरत सी जर्नी, इस पर ढेर सारी बातें हमारी हर रोज होती रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन जो मील है सुबह का उसके बिना कोई भी बात इट हैपेंस की खासकर अधूरी है। बिकॉज इट हैपेंस जब हमने शुरू किया था, इनफैक्ट टीम ने मुझे ये कहा था कि आप जैसा शो लेकर जाना चाहें आप ऑन एयर जा सकती हैं। तो जब मैंने इट हैपेंस चूज किया था आपके लिए तो मुझे यही लगा था कि यार मॉर्निंग शो है तो मॉर्निंग शो में कुछ ऐसा बेहतरीन होना चाहिए जो ऑडियंस को खुद से जोड़े, है ना। हम ऑडियंस से किसी भी प्रोग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ऑडियंस खुद के साथ कनेक्ट करती है, लिसनर्स खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको आपकी इम्पोर्टेंस बताना इस शो का मकसद है और यही हम हर रोज कोशिश करते हैं। आज भी इस शो का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम आपको आपकी इम्पोर्टेंस बता सकें, और आपकी इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी के हर एरिया में है। मतलब चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका ऑफिस हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं होंगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो किसी की वजह से भी रुकती नहीं है, कोई भी काम किसी की वजह से नहीं रुकता, लेकिन आप उस काम को बहुत बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बेहतर निभा सकते हैं, आप अपने ऑफिस के हर काम को, अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, डील करते हैं उसके साथ में, राइट। तो बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप अच्छे से निभा रहे हैं, आप बहुत प्यारे हैं और इस दुनिया में रहना, हेल्दी और स्ट्रांग रहना आप डिजर्व करते हैं, इसलिए